0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम में हम बैनुल अक़वामी पाकिस्तानी और डेनिश खबरों पर बातचीत करेंगे। और ये मौजूआत जो हैं ये हम डेनिश मीडिया इंटरनेशनल मीडिया से लेके आते हैं। और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, पिछले दो हफ्ते की कुछ छोटी छोटी खबरें जो हैं वो गैर सियासी खबरें सेहत के बारे में, और वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। उसके बाद हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि चंद एक अमवात हुई हैं। एक तो मोराको में एक डेनिश जो शहरी थे वो मोराको के, लेकिन डेनमार्क में रहते थे और वो काफ़ी एक्टिव थे डेनमार्क में इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन में। उनका नाम था सईद मंसूर। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी जिसको हुकूमत ने जो है वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया और कोर्ट ने उनको जो है मुल्क बदरी की, पहले तो सज़ा दी, उसके बाद सज़ा के बाद उनको ये कहा गया कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो काफ़ी अरसे तक मुल्क नहीं छोड़ा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शहरियत ख़त्म कर दी तो फिर उनको मुल्क छोड़ने के लिए जो है आसानी हुई। और डेनिश हुकूमत ने मोरक्कन हुकूमत से मिल के जो है एक बातचीत की, जिसमें मोरक्कन हुकूमत ने पहले तो इनकार कर दिया था उसको लेने के लिए, क्योंकि उस पर भी कुछ इल्ज़ाम थे मोरक्को में, लेकिन बाद में वो उसको वहाँ पे ले लिया गया। तो अब जो है वो जेल में थे वहाँ पे मोरक्को में, और पुरसरार तौर पे वो उनकी डेथ हो गई है। चलिए अब, लेकिन दुख की बात यह है कि इंगस्तोबिया ने उनकी मौत पे जो है बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि ये मैंने उनको यहाँ से निकलवाया था। तो उस पर भी अभी वज़ीर ख़ारजा की भी उस पर बयान आया है और इंगस्तोबिया को उन्होंने बुरा भला कहा। मैंने भी इंगस्तोबिया की फेसबुक पर जाके कहा कि एक शख्स जो मर जाता है वो जो भी हो उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ख्याल कीजिए। दूसरा यह है कि आपको याद होगा 80s 90s में एक बहुत मशहूर डेनिश जर्नलिस्ट थी ईवा योर्गेंसन, और उनकी भी जो है हार्ट बंद होने से वफात पा गई हैं। वो उनकी 63 साल की उम्र थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे से डिप्रेस थी और उनको बड़ा दर्द था। उन्होंने किताबें भी इस चीज़ पे लिखी हैं। तो दोनों की रूह के लिए हम जो है हमारी गुड विशेस। अच्छा, अब एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर वो ये है गूगल की तरफ से। आज हम जब इंटरनेट पे जाके गूगल में कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं तो अगर हम कुछ लिखें तो उससे मुतल्लिक खबर जो है वो गूगल वहाँ तक हमें जो है वो रसाई मिल जाती है, और वो उस खबर को हम उस पे जाके किसी अखबार से या किसी रेडियो पे या किसी शख्स ने अगर बयान दिया तो उसको वहाँ पे जा पढ़ सकते हैं। अब गूगल ने यह कहा है कि हम इसको तब्दील करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम आपको उस खबर के मंबे तक लेके जाएं, हम आपको बताएंगे कि वो खबर क्या कहती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप अगर कुछ लिखते हैं तो फ़ौरन गूगल जो कहता है कि हमने ये चीज़ जो है आपके लिए ढूंढी है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है, इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, कि वो बजाय इसके कि वो ख़बरों पे जाएं, तो गूगल जो है आपको सब चीज़ें जो है पेश कर देता है कि आप ख़ुद जो है वो देख लें, गूगल ने जो वो खबरें ढूंढी हैं। तो देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा, स्टूडेंट कहते हैं हमें उनका फ़ायदा होगा और जर्नलिस्ट भी कहते हैं, लेकिन ख़बर पढ़ने के लिए जो है अखबार में या रेडियो पे या टीवी पे जाने के गूगल आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, एक और बात जो है जो दुख वाली बात यह है कि डेनमार्क ने अपना असर रसूख हासिल करके जो है पूरे यूरोप में जो है वीज़ा की पॉलिसी, असाइलम की पॉलिसी चेंज किया, इसको हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन एक और यूरोप के तवस्से से खबर यह है कि हीट वेव बहुत ज़बरदस्त है पूरे यूरोप में, और पाकिस्तान में भी जो है 46 तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो वो लोग जो पाकिस्तान सफ़र करना चाहते हैं या गाड़ी के साथ फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन वगैरह चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इसका ख्याल कीजिए कि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है, उसके लिए आपको चाहिए कि पानी ज़्यादा पिए और आप सन स्ट्रोक जो है उसको अवॉइड करें और क्रीम वगैरह लगा लें ताकि आपकी जो स्किन पे उसका असर ना हो। और ये जो हीट वेव है उससे बचने के लिए एक और भी बात की जाती है कि इनडोर रहें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और बीचेस वगैरह पे अगर जाएं तो आप थोड़ी सी अपनी साए में बैठ के बात किया जाए। अच्छा, एक और ख़बर हम आप तक पहुंचा देते हैं, वो ये है कि एक नई स्टडी आई है अमेरिका में, जिसमें उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट जो हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको ये हैरानगी होगी कि अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो अरबों डॉलर्स का उनका वहाँ पे बिज़नेस है, और उन्होंने कई बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियाँ वहाँ पर काम की हुई हैं, और ये रिपोर्ट जो है इससे पाकिस्तान को जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो है इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स की जो इनोवेशन वगैरह है और जो उनका सलाहियतें हैं उसका उसको सराहा गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका में जो है इंडियन एंटरप्रेन्योर बहुत हैं, और वाकई वो बहुत हैं, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र जो है वो नहीं होता था। तो अब अमेरिका में पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो उनका भी जिक्र होना शुरू हो गया। भारत के तवस्सुत से भारत के मारूफ अदाकार जो हैं नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने अपने मुल्क के सियासी निज़ाम पर खुल के तनकीद की है, और एक तकरीब में गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सयाह जो हैं अब वो भारत आने से डरते हैं बल्कि गुरेज करते हैं, क्योंकि वहाँ आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया जाता। तो ये तो आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा कि जो ट्रैवलर इंडिया जाते हैं उनमें से बहुत से लोग वहाँ पर जो है उनको छेड़ा जाता है, उनसे पैसे जो है बटोरे जाते हैं। तो इसको काफ़ी अभी इस पर बहस हो रही है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान की मेहमान नवाज़ की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मेहमानों की इज्जत करना सीखना है तो पाकिस्तान से सीखो, जहां आने वाले लोगों को इज्जत और मोहब्बत दी जाती है। और ये तो आप जब सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान जाते हैं मुख्तलिफ वहाँ पे सिखों के जो मज़ारात हैं उनको देखने की, तो उनके आप अगर इंटरव्यू सुने तो वो भी बहुत पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की बहुत तारीफ करते हैं। कल हफ्ते के रोज़ नॉरेब्रो में एक बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी, क्योंकि कल जो था वो रेफ्यूजीज़ का इंटरनेशनल दिन था यूनाइटेड नेशन का, और कोपेनहेगन, उडेंसे और अलबर्ग में मुख्तलिफ एनजीओज़ ने मिलके जो है काफ़ी एहतमाम किया था। तो नॉरेब्रो में काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, और तकरीरें हुई, खाने के वो स्टॉल लगे हुए थे, तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तानी भी कुछ काफ़ी लोग वहाँ पे, क्योंकि नॉरेब्रो में रहते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को भी देखा गया। तो एक और आखिरी खबर यह है कि कोपेनहेगन में कुछ स्ट्रीट्स जो है उसको वो बंद करके गाड़ियाँ वगैरह से उसको वो टूरिस्ट के लिए समर में उसको टूरिस्ट स्ट्रीट बना दिया उन्होंने, तो वो जो है आप शहर के अंदर कोपेनहेगन टाउन हॉल के साथ एक सड़क है स्किन गए, उसका कुछ हिस्सा और स्टूडियस तरह से उसका कुछ हिस्सा जो समर स्ट्रीट्स बना दी गई हैं, नए नए होटल रेस्टोरेंट और जो वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं, तो ये कोपेनहेगन कमून ने किया कि हम इसको ये देखना चाहते हैं कि समर में जो टूरिस्ट आते हैं उनको जो है वो कुछ ज़्यादा सहूलतें दी जाएँ। आखिरी खबर जो है वो सेहत के हवाले से है और वो भी पाकिस्तान के एक बहुत जैद डॉक्टर हैं जो अमेरिका कैनेडा में रहते हैं, डॉक्टर नवीद सैयद, उन्होंने जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जो है वो पढ़ाते हैं रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त रिसर्च ये किया है कि ब्रेन का जो ट्यूमर होता है उसकी तलाश के लिए पहले तो उसकी जो है काफ़ी रिसर्च वो होता है स्कैनिंग वगैरह होती है, अब उन्होंने एआई की मदद से ये पॉसिबिलिटी जो है कि उसको बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि वो ट्यूमर कहाँ पे है, तो इसमें भी उन पाकिस्तानी डॉक्टर को जो है वो इंटरनेशनल काफ़ी पिज़राई मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये चंद खबरें थी जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। अब हम चलते हैं अपने मोहसिन जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर भाई क्या है आपका, संडे मना रहे हैं?
3: जी संडे मनाने से पता नहीं आपका क्या मतलब है, इस वक्त तो हम आपके साथ में गुफ्तगू हैं।
2: नहीं गर्मी की वजह से कह रहा हूँ।
3: हाँ हाँ आपने ये बड़ा छोटी छोटी मुख्तसर बड़ी अहम खबरें दी हैं,
2: थैंक यू।
3: और इसमें खासतौर पर अमरीका में बाज पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ की मुआशरत में और वहाँ की इकतसादियात वगैरह में किस तरह अपना हिस्सा जाता है। यहाँ डेनमार्क में भी ऐसे कई लोग हैं हमारे खासतौर पर पाकिस्तानी नौजवान जो आई टी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अपनी कंपनियाँ बना के बड़ी आला हाई प्राइसेस पर इनके ऊपर फरोख्त भी करते हैं।
2: दुरुस्त।
3: तो ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए
2: जी। अच्छा नसर भाई, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था शुरू में कि डेनमार्क ने एक बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बुरा जो है अपना इन्फ्लुएंस हासिल किया। डेनमार्क ने कम्पेन किया यूरोप में और उसकी वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट में जो है एक उन्होंने एक लॉ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन प्रपोजल को एक्सेप्ट कराया है कि तीसरी दुनिया के जो लोग यूरोप में आते हैं उनको रोकने के लिए अब यूरोपियन यूनियन जो है, डेनमार्क नहीं सिर्फ या यूके बल्कि यूरोपियन यूनियन शामिल होकर मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक में वो जो है सेंटर बनाएगी। और हमारी वज़ीर आज़म उन्होंने उससे बड़े फ़ख्र से कहा कि देखिए मैं एज ए वज़ीर आज़म मेरी टॉप प्रायोरिटी जो है वो इस चीज़ को कबूल करवाना और इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है। और वो उन्होंने कहा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट आ रहे हैं और इसमें से कुछ तो बहुत, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनलिटी में शामिल हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लोग हमारे यूरोप में आएं। उन्होंने अब यूरोप का भी ठेका ले लिया डेनमार्क के साथ साथ।
3: ये बिल्कुल आपने बजा कहा और हमारी वज़ीर आज़म सोशल डेमोक्रेट मेटे फेरिक्सन जो हैं
2: जी जी
3: वो इस बात पर बड़े फख्र कर रही हैं, ना सिर्फ अपनी मौजूदा हुकूमत से जब वो बसर इकतदार आई हैं बल्कि अपनी पिछली हुकूमत में भी उनकी तो ये जुगल जग रही है कि यहाँ उस वक्त सिर्फ डेनमार्क का जिक्र होता था
2: जी,
3: कि डेनमार्क आने वाले जो जो सियासी पनाह के तलबगार हैं महाजरीन हैं और इस तरह के लोग जो हैं ये बराह रास्त यहाँ डेनमार्क आने की बजाय इनको किसी दूसरे मुल्क में रखा जाए और वहाँ से ये अपनी पनाह की दरख्वास्तें वो दें और जब तक उन पर कोई फैसला नहीं हो जाता इनको वहाँ तीसरे मुल्क में या दूसरे मुल्क में काम किए जाने वाले पनाह के जो सेंटर होंगे वहीं पर रखा जाना होगा
2: जी।
3: तो लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं कि डेनमार्क के इस इनिशिएटिव पर पूरी यूरोपीय यूनियन के मुल्क जो हैं वो इस बात पर रजामंद होते दिखाई देते हैं कि वाकई ही ऐसा सेंटर जो है वो किसी अफ्रीका के मुल्क में बना दिया जाए। और आप जानते हैं कि बरतानिया ने ये बनाने के अमली तौर पर इकदाम लेते हुए अपने यहाँ से कुछ महाजरीन को वहाँ भेजने की कोशिश की थी रिवांडा में
2: जी।
3: جس کو برطانوی سپریم کورٹ جو ہے اس نے اور برطانیہ کے جو سب سے بڑے پادری ہیں جو وہاں پر کام کرتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے اس کی مذمت کی تھی اور انہوں نے یہ اقدام رکوا لیے تھے. لیکن اب جو میمورینڈم وہاں پیش کیا گیا ہے یورپی یونین کے پارلیمنٹ میں اس کے متعلق جس طرح کی آرائیں آ رہی ہیں ان سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ممالک اب ڈنمارک کو سمیت اپنے ہاں پورے اس خطے کو جو یورپی یونین کراتا ہے وہ مہاجرین کی آمد کے لیے بند کر دینا چاہتے ہیں. اور یہ اس پر کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں جن میں آپ کی تنظیم بھی شامل ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ نے بڑی سخت تنقید کی ہے کہ ایسا کرنا انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہوگی. لیکن جیسا کہ آپ نے خود کہا اپنے ابتدائیہ میں جب وزیر اعظم میٹک فریڈکسن اس بات پر فخر کرتی ہیں تو یہ ان کے لیے تو قابل فخر بات ہوگی لیکن دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے سخت نازیبا اقدامات ہوں گے جو اپنی جان بچانے کی خاطر ان ممالک کی طرف آتے ہیں اور یہ ممالک انہیں یہاں قبول کرنے کے بجائے آگے کسی تیسرے ایسے ملک میں بھیج دیتے ہیں جہاں کا اپنا انسانی حقوق کا جو جو رویہ ہے انسانی حقوق کے متعلق وہ ناقابل قبول ہے اور جو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی اس پر اپنا تحفظات رکھتی ہے کہ وہاں پر نہ بھیجا جائے.
2: اچھا نصر بھائی, یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ یورپین پارلیمنٹ میں جب ووٹنگ ہوئی تو اس میں ڈنمارک کی حکومت کی دو پارٹیاں جو ہیں ریڈیکل وینسٹرا اور ایس ایف دونوں نے اس جو بل کے خلاف ووٹ دیا. تو وزیر اعظم بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں لیکن وزیر اعظم کو تو یہاں کی جو ان کی پارٹیاں جن کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی ہے وہی ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتی.
3: جی آپ نے بالکل وجہ کہا, ریڈیکل وینسٹرا نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایف نے اس بل کی سخت مذمت کی ہے اور انہوں نے اپنے بیانات میں اس مجوزہ بل کی ایک طرح سے تشریح کرتے ہوئے اسے ایک نا انصافی کی طرف قدم قرار دیا ہے. اور یہ بات آپ کی بالکل وجہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم اپنی پارٹی کے وہاں پر ان پارٹیوں سے مشاورت کیے بغیر یعنی ریڈیکل وینسٹرا سے اور ایس ایف سے کیا اپنے اس قدم کو آگے جاری رکھیں گی یا اس میں کچھ تبدیلی کرنے کی اور کچھ آسانی کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن ایک بات حتمی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈنمارک نہیں چاہتا کہ ان کے ہاں براہ راست سیاسی پناہ کے طلبگار آئیں.
2: جی
3: اور یہ چاہتا ہے.
2: یہ آپ نے جو بات کی ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں یورپ میں دوسرے ممالک سے ان میں سے اکثریت سیاسی پناہ کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ممالک میں بڑے پرابلم ہیں. تو ان کو ان کی اکثریت کو مجرم کہنا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط بات ہے.
3: جی آپ نے بالکل بجا کہا اور اچھا کیا آپ نے یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیا. کیونکہ جب یہ لوگ اپنے ممالک سے اپنی جان بچانے کے لیے نکلتے ہیں, میں خراب تو نہیں کہوں گا, جب نکلتے ہیں تو ان ممالک کا رویہ پہلے جیسا اب نہیں رہا. اب یہ ہر ایک کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ آنے والا یا آنے والی ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ جن کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے وہ بعض میں ایسی تقریبی کاروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ مقامی قوانین یعنی دینش قوانین اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں.
2: جی
3: وہ ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی جو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کا احترام کریں.
2: درست, بالکل.
3: اور اس طرح سے لیکن دوسری جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈنمارک اپنے اس غیر انسانی رویے پر ندامت محسوس کرنے کی بجائے اسے بڑے فخر سے یہ پیش کر رہا ہے.
2: جی ہاں بالکل.
3: ڈنمارک کی جو امیگریشن سخت ترین پالیسیاں ہیں پورا یورپ اب ان پر عمل کرنے کو تیار ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کی موجودہ حکومت جو ہے اس نے تو برملا کہا ہے کہ ہمارے ہاں جو امیگریشن کے معاملے میں سخت پابندیاں نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی ابتدا اور اس کا خیال اور تصور ہم نے ڈنمارک سے لیا ہے.
2: بالکل درست کہا آپ نے.
3: تو اس طرح سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈنمارک جو کسی زمانے میں عالمی انسانی حقوق کا علمبردار اور چیمپئن سمجھا جاتا تھا اب وہ بذات خود اپنے ہی اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت ترین امیگریشن پالیسیوں کی نہ صرف اپنے ہاں ضرورت اور لاگو کرنے کی اہمیت پر زور دے رہا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پورا یورپ جو ہے وہ اس کی پیروی کرے اور اسی سلسلے میں یہ ریزولوشن جو یہ میمورینڈم جو ہے یہ یورپی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے.
2: آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ڈینش پیپل پارٹی اور پیا کیسگو کو کہا جاتا تھا کہ وہ یورپ میں نفرت پھیلانے کی جو ہے وہ ماں ہیں. تو کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ یورپ کے قوانین کو سخت ترین کرنے کے لیے اب اسی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں؟
3: آپ نے بالکل بھی کہا, ماں تو خیر وہ بنیں گی یا نہیں بنیں گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے اقدامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے
2: exactly.
3: کہ وہ اس بات کا کریڈٹ لینا چاہتی ہیں
2: بالکل
3: کہ نہ صرف ڈنمارک میں بلکہ پورے یورپ میں جو سخت ترین امیگریشن پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اور جن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ان کی مرہون منت ہیں اور انہوں نے ان کو یہ راہ دکھائی ہے کہ کس طرح یورپ میں اور خاص طور پر ڈنمارک میں آنے والوں کی راہیں جو ہیں وہ بند کی جا سکتی. یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے خود سامعین ڈنمارک میں کئی ایک پاکستانی ہیں جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر وہ بہت اہم اور ضروری کام کرتے ہیں. یقیناً سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی ان پالیسیوں کے متعلق اور خاص طور پر وزیر اعظم کے ان بیانات کے حوالے سے وہ خوب جانتے ہوں گے کہ وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں. تو میری ان سے یہی صدا ہے آپ کے ریڈیو ہم وطن کے ذریعے سے کہ خدا را اپنی پارٹی کو اور اپنی پارٹی کے پالیسی ساز جو لوگ ہیں اور خاص طور پر وزیر اعظم ان کی توجہ اس طرف دلوائیں کہ وہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں.
2: بہت خوب بہت خوب. اچھا اگر اگلی دو خبریں جو ہیں اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈنمارک کی جو حکومتی پارٹی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی وہ اس بات پر زور دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈنمارک کو جو ہے وہ الگ تھلگ کریں اور یہاں پہ کوئی نہ آئے اور یہاں پہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں کریں. اب اگلی خبر یہ ہے کہ ڈنمارک کے وزیر قانون جو ہیں نکولائے وامن انہوں نے یورپین یو کے کمیشن کی ایک بہت پرانی تھی کہ مختلف ممالک میں ابھی شینگن میں جو ہے سارے بارڈر کھلے ہوئے ہیں لیکن ڈنمارک کا جرمنی کے ساتھ جو بارڈر ہے جہاں سے اسائلم سیکر آ سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بند کر دیا ہے اور یہ پچھلے کافی سالوں سے ہے اور اس کو ہر چھ مہینے کے بعد اس کو حالانکہ اسائلم سیکر بالکل بند ہو گئے آنا لیکن انہوں نے پھر حکومت بنتے ہی جو ہے وہ 12 جولائی سے اب انہوں نے کہا کہ ہم 4 مہینے کے لیے جرمنی کا بارڈر بند کر دیں گے اور جب آپ جرمنی سے آئیں یا جائیں تو اس وہاں پہ آپ کی تلاشی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو اتار کے جو ہے بس سے یا ٹرین سے وہاں پہ وہ پکڑ بھی سکتے ہیں.
3: دیکھیے یہ طریقہ کار کے برسوں سے یہاں پر جاری ہے جی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وقفے وقفے سے اس طریقہ کار کی تجدید کی جاتی رہی ہے
2: جی,
3: اور اب چند ایک مہینے سے یہ بہت کم کیا جاتا تھا کہ سرحدوں پر خاص طور پر جرمن سے ملحقہ ڈینش سرحدیں جو ہیں ان پر کنٹرول کیا جائے, آنے جانے کی کسی حد تک کھلی اجازت تھی
2: جی.
3: لیکن اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور اس میں جو نئے وزیر انصاف بنے ہیں یہ نکولائے واما
2: جی,
3: انہوں نے یہ مسئلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے. دکھائی یوں دیتا ہے کہ تارکین وطن کے نام پر سرحدوں کو بند کر دینا, یہاں آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور ان کو جبری طور پر ملک سے باہر نکالنا
2: جی,
3: یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پیش رفت کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں جو انتہائی جان بازوں کی تارکین وطن مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پیش کر کے اپنی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہیں. یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے
2: جی,
3: اور لیکن اس سے یہ اندازہ نہیں کرنا چاہیے کہ رائے دہندگان جو ہیں وہ کہاں تک سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. رائے دہندگان کی اکثریت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ان غیر منصفانہ اقدامات کی حمایت نہیں کرتے.
2: جی ہاں, وہ تو جو ووٹنگ ہوئی ہے نومبر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کافی شکست بھی ہوئی ہے, ان کو ووٹ زیادہ نہیں پڑے. اچھا اگلی خبر جو ہے وہ اس میں وہ بھی ایک عجیب و غریب ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ان کے جو شہریت کے لیے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر उसमें वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान हैं। अब वो उन्होंने ये कहा है कि किसी शख्स को, ख़ासतौर पे तीसरी दुनिया के कोई शख्स को, अगर कोई डेनिश नेशनलिटी के लिए सारी शर्तें पूरी की चाहिए, उसकी मेंटल स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए कि क्या ये जमहूरियत को एक्सेप्ट करते हैं, डेनिश वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं नहीं। अब कौन सी मशीन है जो आपको ये बताएगी कि ये इसका दिमाग क्या कह रहा है?
3: ये एक बड़ा
2: अजीब और गरीब खबर है जी।
3: ये एक न सिर्फ अजीब और गरीब खबर है बल्कि अगर इस तरह में अगर आप जाएं तो कमोबेश पिछले 17-18 साल से ये चीज़ सामने रखी जा रही थी और इस पर मुख्तलिफ आराएं जो हैं वो सामने आ रही थी कि इन गैर मुल्कियों को, खासतौर पर मुसलमान जो हैं, जब वो शरीयत के लिए अप्लाई करते हैं और तमाम शरायत पर पूरा भी करते हैं तो उनकी जहनी और कल्बी कैफियत जानने के लिए कोई टेस्ट किया जाए। मसलन ये जमहूरियत पर कितना यकीन रखते हैं, इंसानी हकूक के जुमरे में ये होमोसेक्सुअलिटी और लिस्बियन के मतलब क्या राय रखते हैं
2: जी।
3: इस तरह के सवाल अगर आप किसी एक मुसलमान को पूछेंगे तो यकीनन वो अपने अकीदे अपने मशरक के मुताबिक जवाब देगा जो इनके नज़दीक काबिल कबूल नहीं है
2: जी।
3: और मुमकिन है कि वो फर्द, मुसलमान फर्द डैनिश शरीयत हासिल करने के बाद उस तरह के ख्याल न रखे जैसा कि डैनिश लोग जो हैं या खासतौर पर सियासतदान और सोशल डेमोक्रेट पार्टी समझती है कि ये इस तरह के लोग हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। यही चीज़ अगर डैनिशों पर अप्लाई की जाए तो वहाँ भी खातिर नतज नहीं निकलेंगे, असर पता नहीं चल सकेगा। तो असल में ये तरीका वारदात जो है, वारदात से कह रहा हूँ, ये इसलिए है कि कम से कम लोगों को डैनिश शरीयत दी जाए और डैनिश शरीयत के हसूल को इतना सख्त कर दिया जाए कि लोगों के लिए डैनिश शरीयत हासिल करना मुश्किल हो जाए।
2: अच्छा नसर भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बड़े अरसे से यहाँ रह रहे हैं, आप बहुत से डेनिश लोगों को जानते हैं, उनके साथ काम किया है। मैं बहुत से डेनिश लोगों को जानता हूँ और उनके साथ काम किया जो जमहूरियत पे यकीन ही नहीं रखते, बल्कि वो जमहूरियत को कैंसिल करके वो चाहते हैं कि यहाँ पर कम्युनिज़म लाया जाए। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं, अगर मैं अगर ऐसे ख्यालात का इजहार करूं या कोई और शख्स करे तो उसमें और डेनिश शख्स के ख्यालात में क्या फ़र्क है?
3: बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये आपने बड़ी पुरानी चीज़ें मुझे याद करा दी
2: जी। बिल्कुल,
3: डेनिश लोगों की एक काफ़ी बड़ी खामोश शख्सियत जो है वो अपने यहाँ के समाजी, जिसे हम सोशल सिस्टम कहते हैं, उससे इत्तेफाक नहीं करती।
2: एग्जैक्टली,
3: और उसमें तब्दीलियां चाहती है
2: जी।
3: और वो देख रही है कि डेनमार्क में अमीर से अमीर लोग होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो
2: गरीबी
3: की खाद्य फसल जो है उसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं
2: जी।
3: वो दरमियाना तबका जिसे हम व्हाइट कॉलर कहते थे उसकी तादाद कम होती जा रही है
2: जी।
3: और समाज में, माशरे में ये तसाद जो है या ये फर्क जो है ये इस कदर नुमाया हो गया है कि आप लोग जो हैं वो खुले बंदोबस्त बात कर रहे हैं कि इस निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए
2: जी।
3: अब तब्दीली के लिए क्या राह इख्तियार की जाए, वो वही है कि वोट का इस्तेमाल किया जाए और जो इलेक्शन होते हैं तो उन पार्टियों को वोट दिए जाएं जो आपके इस नज़रिए से मुत्तफिक हैं, इत्तफाक रखती हैं
2: जी।
3: और जहाँ तक ये बात है कि डेनमार्क में, अब आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत का जो ढांचा बना है उसको सोशल डेमोक्रेट पार्टी के साथ SF का जो इत्तेहाद है उससे लोगों बहुत वकवात है
2: जी। जी बिल्कुल,
3: लेकिन बदकिस्मती से SF जो है वो अपने अंदरूनी मिसाइल में इस तरह घायल हो रही है कि उसके जख्म बच्चे दिखाई नहीं देते
2: और हुकूमत में आते ही उन्होंने अजीब और गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं।
3: वो कमोबेश वो वही पॉलिसियां अपना रहे हैं जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी जिनकी नुमाइंदगी करती है।
2: दुरुस्त,
3: और ये तरीका जो है ये हम गैर मुल्कियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो बार बार यही अर्ज करता हूँ और यकीन आप भी मुझसे इतफाक करेंगे कि हमारे वो बहन भाई जो यहाँ जनमत में इन सियासी पार्टियों से मुतल्लिक हैं उन्हें हर मौका पर अपनी पार्टी की आदत को ये बात याद दिलानी चाहिए कि गैर मुल्कियों के मुतल्लिक और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मुतल्लिक, हम मुसलमानों के मुतल्लिक जो चीज़ें इस वक्त पार्लियामेंट में जेर बहस आने के लिए मुसवदे तैयार किए जा रहे हैं उन पर निगाह रखी जानी चाहिए।
2: जी बिल्कुल, اور اپنی پارٹی کے اندر رہ کے جو ہے وہ اختلاف تو جو ہر سب کا جمہوری حق ہے یہ آپ کا,
3: اور یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ جہاں آپ کو اس حق کے اندرونی پارٹی استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے.
2: جی بالکل,
3: ضروری نہیں کہ آپ باہر سڑکوں پر نکل کر شور مچائیں اور یہ کریں.
2: جی
3: بالکل, جب آپ بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے, پارٹی کی متعلقہ کمیٹیوں سے اور پارلیمنٹ کی متعلقہ کمیٹیوں سے, تو وہ بات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں ضرور اثر انداز ہوتی ہے.
2: اچھا ایک اور خبر ہے, وہ عجیب و غریب خبر ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کی رائے لوں گا. وہ یہ ہے کہ ہمارے پرانے دوست تو کیا ناصر خالدار صاحب ہیں, وہ ایک تو انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے اسلام سے اپنا جو ہے رشتہ توڑ لیا, اس کے بعد انہوں نے پریسٹ بننے کے لیے جو ہے کورس شروع کیا 3-3.5 سال کا. اب وہ جولائی کے مہینے سے جو ہے وہ ایک پادری کی طرح نصف میں ان کی تقرری ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ کام شروع کریں گے. لیکن انہوں نے اس خبر کے ساتھ ایک اور جو بات کی ہے جس پہ مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا, وہ کہتے ہیں میرا یہ کام تو ضرور ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم جو ہے ان کی امن کی بات جو ہے اس کو مسلمانوں تک پہنچاؤں اور ان کو اسلام سے دور کر کے عیسائیت میں شامل کروں.
3: جی بالکل, یہ تو آپ نے ان کہا, کیونکہ وہ عیسائیت قبول کر چکے ہیں
2: جی,
3: اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے پادری بننے کے لیے جو متعلقہ دینی معلوماتی کورس ہوتا ہے وہ بھی مکمل کر لیا ہے
2: جی,
3: اور بڑی شان سے مکمل کیا ہے, اور ان کو پادری کے طور پر دینی فرائض ادا کرنے اور ادا کروانے کے لیے ان کو اجازت نامہ مل گیا ہے. جیسا آپ نے کہا
2: جی,
3: وہ ابھی ایک دو مہینے میں اگلے مہینے میں اپنی آبادی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کریں گے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں کو دین کی عیسائیت کی طرف راغب کریں گے تاکہ وہ امن امان سے رہیں اور یہ رہیں اور وہ اس طرح کریں اور اس طرح کریں, یہ چیزیں ان کو پہلے کہیں کبھی نظر نہیں آئی. اسلام تو مکمل امن دوستی اور بھائی چارے کا دین ہے, اگر اس میں کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں تو یہ دین کا تو قصور نہیں ہے, یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو جنگیں جاری ہیں وہ مسیحیت اور عیسائیت کو قبول کرنے والے لوگوں نے شروع کر رکھی ہیں.
2: لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کسی پالیٹیشین نے خواہ وہ لیفٹ کا ہو یا رائٹ کو ناصر خدار کو کچھ نہیں کہا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان امام یہ کہہ دے جو ٹی وی کے اوپر کہ میرا کام یہاں پہ یہ ہے کہ میں ڈینش عیسائیوں کو مسلمان کرنا چاہتا ہوں اور ان کو عیسائیوں سے دور کرنا چاہتا ہوں, تو پھر ڈینش پالیٹیشین کیا کہیں گے؟
3: میرے خیال میں یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ہمارے ان احباب کو مد نظر رکھنی چاہیے جو دین کے متعلق یہاں سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں
2: جی,
3: اور دوسرا جو ناصر خضر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح پہلو بدلتا رہا ہے اور اس پر کس طرح کی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے مقدمات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے تھے
2: جی, بالکل کافی
3: جی. تو پہلے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معذرت کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں سرزد ہوئیں اور میں نے ان پر ندامت محسوس کرتا ہوں, اور پھر اس بات کی بھی گارنٹی دے کہ آئندہ یہ اس طرح کی چیزیں اس سے سرزد نہیں ہوں گی تو پھر بات کریں.
2: جی بالکل, لیکن وہ تو اس کو قبول نہیں کرتا, وہ کہتا ہے یہ میرے پہ الزامات ہیں, میں نے کبھی ایسا کوئی حرکت نہیں کی.
3: یہ جب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کوئی چیز سامنے نہیں آتی, اور ڈنمارک تو ایسا ملک ہے کہ یہاں ہر چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے.
2: ایگزیکٹلی ہاں جی
3: جی, اور کیا ناصر خضر اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر سکے گا کہ اسے عیسائی بن رہنا چاہیے؟ کچھ چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایک حد ہوتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو عیسائیت کے دائرے میں آپ لے گئے, ٹھیک ہے آپ کو مبارک ہو, یہ آپ کا اپنا فیل ہے, لیکن کیا آپ اپنے خاندان میں یہ تبلیغ کریں گے؟ اگر آپ کو یہ جرت نہیں ہے تو آپ دوسروں کے لیے کیسے یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں گے کہ وہ عیسائی بن جائیں؟ یہاں یہ چیز خاص طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا
2: جی,
3: کہ ایسے کچھ لوگ ہیں, یہ کچھ افغانی ہیں, کچھ ایرانی ہیں, जो ईसाईत को कबूल कर चुके हैं,
2: वो तो उनका हक है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है,
3: उनका हक है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि एक गैर जानबूझकर होने की हैसियत से हम ये देखते हैं कि आखिर उनमें ये रवश क्यों पाई जा रही है।
2: जी जी बिल्कुल।
3: इसकी कई वजूहत हैं जिनमें सबसे ज्यादा अहम जो है, या जिसे सियासी पंडित और मजहबी लोग जो हैं वो भी तस्लीम करते हैं कि वो यहाँ रहने के लिए और सियासी पनाह हासिल करने के लिए ये कदम उठाते हैं।
2: हो सके कुछ लोग जो अफगानिस्तान और ईरान के हैं वो वहाँ से जब आए थे यहाँ पे सियासी पनाह लेने के लिए, वो उस वक्त ईरान में जो हुकूमत है या जो उनका सिस्टम है या अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनसे इतनी नफरत हो कि वो इस्लाम से उसके साथ जोड़ के वो इस्लाम को छोड़ दिया उन्होंने। ये उनका हक है, कोई शख्स जो भी अपना मजहब छोड़ना चाहे ठीक है, लेकिन एक पादरी जो है वो टीवी पे बैठ के, नया पादरी जो मिनोर इस फलस्तीनी बैकग्राउंड, वो कहे कि मेरा ये जो है ये काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाकाबिल कबूल बात है।
3: ना सिर्फ नाकाबिल कबूल बात है बल्कि इस पर खुद हुकूमत को ये और मसीह हल्के जो हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह का एक आदमी जो है वो मैदान में उतर रहा है, जो ये पकड़ पकड़ कर लाएगा कि मुसलमान ईसाई हो जाए। अफगानियों के मुताबिक तो मैं नहीं कह सकता कि वो किस मजहब या किस मशरक वगैरह से को छोड़कर ईसाईयत कबूल करते हैं, लेकिन ईरानियों के मुताबिक एक बात मैं वसूख से कहना चाहता हूँ, और खासतौर पर डेनमार्क में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ईरानियों में से जो इस वक्त मसीहियत को कबूल कर रहे हैं उनकी अक्सरियत जो है वो बहाई मजहब
2: भाई जी है। जो बिल्कुल दोस्त सही कहा आपने,
3: वो ना तो शिया है ना सुन्नी है ना कुछ है, वो मुसलमान हैं, और ये बहाई जो हैं ये ज्यादातर ईसाईयत कबूल करते हैं।
2: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इंफॉर्मेशन का। अच्छा, चंद और ख़बरों पे मैं आपका तबसरा लूँगा। एक तो यह है कि अभी एक टेस्ला जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिकन, और उन्होंने अब डेनमार्क में ऐसी गाड़ियाँ बनाने के लिए जो है वो प्लांट लगाने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें गाड़ियों में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, वो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम से जो है डेनमार्क में वो गाड़ियाँ चलाएंगे। लेकिन उससे जो डेनिश ट्रैफिक अथॉरिटी जो है उन्होंने वो अप्रूव कर दी है, लेकिन क्या डेनमार्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त ऐसा है कि वहाँ पे बगैर ड्राइवर के गाड़ियाँ चल सकें?
3: देखिए, बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ चलाने का वक्त तो खैर अभी उस नौजियत का नहीं
2: जी,
3: जैसा कि मुस्तकबिल में दिखाई देता है
2: जी,
3: लेकिन ऐसी गाड़ियाँ अभी डेनिश सड़कों पर आ गई हैं।
2: अच्छा,
3: मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक इंडियन दोस्त हैं,
2: अच्छा,
3: ब्रांडवी में रहते हैं, परसों वो मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो उनकी गाड़ी वो वही थी जो बगैर ड्राइवर के चलती है, यानी उनको गाड़ी में बैठ कर खुद ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, वो बैठे हुए आराम से अपना कोई म्यूजिक सुन रहे थे या कुछ पढ़ रहे थे और उनकी गाड़ी जो थी वो खुद बखुद रास्ते बनाती चली जा रही थी। तो उन्होंने बड़ी मजाकिया बातें भी मुझे बताई जो यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं है, हम वक्त जाया करेंगे, लेकिन ये चीज जो है आपने जैसा कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या डेनमार्क का जो इस वक्त रवायती ट्रांसपोर्ट का निजाम है
2: जी,
3: और सड़कें हैं और गलियां हैं,
2: अच्छा,
3: जी, क्या ये इस बात की मुतअम्मल हो सकेगी कि यहाँ वो जदीद बगैर ड्राइवर के गाड़ियां चल सकें? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात यही सूरत हाल यही सामने आ रही है कि इस तरह की गाड़ियां जो हैं मुमकिन है उनको खास जगहों पर चलने की इजाज़त हो और छोटी छोटी गलियों वगैरह वगैरह में उन पर वो पाबंदी या कोई कंट्रोल किस्म की चीज़ हो,
2: क्योंकि चाइना में तो टैक्सियाँ जो हैं अब उन्होंने बना दी हैं जिसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे नुकसान ही होगा कि अगर आप एआई की मदद से सारे ये काम कराएंगे तो जो लेबर मार्केट जो है उसमें फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी।
3: बिल्कुल, आपने ये बात बजा कही, और आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि मैं अपने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ जा रहा था,
2: अच्छा,
3: और मुझे किसी लंबे कोपेनहेगन से कोई तकरीबन 15-20 किलोमीटर बाहर जाना था,
2: अच्छा,
3: तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ उस रास्ते पर टैक्सी के जरिए, तो मुझे पता है कि वहाँ जाने के कोई तकरीबन 325 करोड़ लगते हैं, आने जाने के एक रास्ते के 325 करोड़ लगते हैं वन वे। तो लेकिन ये जो मेरा ड्राइवर था ये मुझे ऐसे रास्ते पर इसने डाल दिया कि मैं थोड़ा सा देखा मैंने कि ये तो वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं अक्सर जाता हूँ।
2: अच्छा।
3: तो मैंने उससे पूछा कि भैया तुम इधर के भैया इधर से क्यों जा रहे हैं? तो उसने अपने टैक्सी में लगी हुई एक कंप्यूटर स्क्रीन पर मुझे दिखाया जहाँ नक्शा आ रहा है। तो उसने कहा कि जी मैं इधर ही जाना चाहता था लेकिन मुझे इस नक्शे ने बताया है कि यहाँ पर काम हो रहा है इसलिए ये बंद है, ये मुतबादल रास्ता तलाश कर। अब वो मुतबादल रास्ता तलाश करते हुए मुझे जो रकम ज्यादा पड़ी उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैं हैरान हो गया कि देखिए किस तरह एक मशीन एक ड्राइवर को कंट्रोल कर रही है कि तुम किधर से जाना है किधर नहीं जाना है।
2: अच्छा, एक और एक
3: तो इसी तरह ये बगैर ड्राइवर के जब गाड़ियां आएंगी
2: जी
3: तो हमारे अक्सर जो जो हमारी पहली नस्ल के पाकिस्तानी है जी वो तो शायद उस उन दैनिश चीजों को फॉलो ना कर सकें आदायात को जो उस वक्त उनको दी जा रही है।
2: अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं जब कोपेनहेगन में ड्राइव करता हूँ अगर आप जीपीएस लगाएं जो सैटेलाइट के ज़रिए वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कई दफ़ा वो बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कहते हैं इधर से मुड़ो वहाँ से मुड़ो, हालांकि मैं यहाँ रहता हूँ मुझे पता है कि इधर से मुड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे भी जा सकते हैं।
3: यही वो मेरे साथ हुआ उस वक्त वो टैक्सी ड्राइवर के साथ और मैंने
2: जी बिल्कुल
3: वो कहते हैं जी मैं आप जो आप कुछ भी कहें मुझे जो कुछ यहाँ से फॉलो अप करने की कोई नसीहत की जा रही है मैं उसी पर चलूँ।
2: चलिए, अच्छा अभी टैक्सी के तवस्सुल से एक और भी एक अजीब से गरीब खबर है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो नई नए कानून अब वो एक ऐसा कानून बना चाहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो कस्टमर के साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक नहीं करें, मसलन सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करें, और हो सकता है कि एक दो शख्स ने किया हो लेकिन एक ऐसा कानून बनाना जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, कोई सर्वे नहीं किया गया, तो ये भी जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एक अब ये कानून लाना चाहती है।
3: ये आपने बिल्कुल बजा कहा लेकिन ऐसी इक्का दुक्का वारदातें हो जाती
2: है। जी
3: जी, इसमें कोई शक नहीं कि
2: जी जी
3: वारदातें जो हैं वो सामने आती हैं
2: जी,
3: लेकिन इसको एक कानून बना और जब ऐसी वारदातें सामने आती हैं तो पहले से मौजूद कानून जो हैं वो उनका मुहासबा करते हैं और उनका खाता करते हुए मुतलका फर्द या अफराद को सजा भी देते हैं
2: और बदनाम कर रहे हैं सब टैक्सी ड्राइवरों को।
3: और ये चीज मैं आज करने वाला था कि इस तरह से आप एक ऐसी चीज जो कि इक्का दुक्का कभी रूनुमा हो उसको जू बनाकर पेश कर रहे हैं जैसे ये आए दिन के वाकयात होंगे।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
3: और ये डेनमार्क की अपनी शोहरत के लिए और टैक्सी ड्राइवरों के लिए ये एक तोहीन अंदेज रवैया है कि आप एक ऐसी चीज जो यहाँ पर मेरी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती
2: जी,
3: अगर कोई इक्का दुक्का वाकया होता है तो वो महज इत्तफाकियत नहीं हम कह सकते वो होता है।
2: नहीं, अगर आप अखबार पढ़ें या टीवी पे देखें तो बहुत बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं कि किसी ड्राइवर ने, और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि कुछ लोग ख़वातीन जो हैं ख़ासतौर पे वो ड्रंक हो के वो पैसे नहीं देना चाहती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे साथ तुम ये कर लो और बाद में वो जो है रिपोर्ट कर देते हैं।
3: कई केसेस ऐसे हुए हैं
2: जी, बस चंद एक वाक़ ऐसे हुए हैं
3: जी जी, लेकिन
2: जहाँ तक
3: फिर वही बात आ जाती है कि इस पेशे में हमारे बेशुमार पाकिस्तानी भाई जो हैं वो काम करते हैं।
2: बिल्कुल,
3: उनको मोहतात रहना चाहिए और उनको इस तरह की जो तब्दीलियां लाई जा रही हैं जो इस तरह के गैर जरूरी कानून पर बहस व मुबाशे जो है वो जारी किए जा रहे हैं उन पर कान रखने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है।
2: बिल्कुल दोस्त आपने।
3: और जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे पाकिस्तानियों की अपनी जो टैक्सी ड्राइवर्स की जो यूनियन है
2: जी,
3: या जो इनका एक इत्तेहाद है उसमें इस मसले पर आवाज उठाई जानी चाहिए।
2: बिल्कुल। अच्छा, एक नई रिपोर्ट आई है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही तश्वीशनाक है और इसमें हुकूमत को कुछ करना चाहिए। वो रिपोर्ट यह है कि यूरोप में कोकेन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और उसमें नॉर्वे जो है वो नंबर एक है, नौजवान लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं, डेनमार्क नंबर छः है, इन सब 44 ममालिक में 46 ममालिक में, तो ये ख़बर जो है ये इतनी ख़तरनाक है कि इससे, और जो नौजवान जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो

0: डेनिश टेलीविजन पर और ज़राए ब्लॉग में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 18-18 साल के नौजवान, 24 साल के नौजवान के कब्जे से 11-11 किलो कोकीन और दूसरे मंशियात जो हैं वो जब्त की गई। और वो कहाँ कौन लाता है और उनको आगे किस तरह मार्केट में ले जाया जाता है, कौन लोग खरीदते हैं, इस पर डैनिश जो महकमाना कार्रवाइयां करने का महकमा है वो तो मुतहर्रक है। पुलिस बड़ी सख्ती से इन पर इकदाम ले रही है और उनके साथ डैनिश पुलिस का जो चोरा गुसानी का महकमा है वो भी बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। लेकिन देखा ये गया है, बड़ी मजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इसमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल है, जहाँ रहने वाले गैर मुल्की शामिल है और वो जो इनके सरगुना हैं इस कारोबार के, वो उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनकी उम्रें 16 से 18 साल से कदरे कम हो।
1: लेकिन ये रिस्क बहुत ज्यादा है कि इससे मौतें बहुत हो रही हैं लोगों की।
0: जी बिल्कुल, मौतें हो रही हैं और ये डोज से ज्यादा ले लेने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं तो ये अर्ज करूंगा कि हमारे जो पाकिस्तानी खानदान है वो अपने नौजवानों पर निगाह रखें और अल्लाह के फजल करम से अभी तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। हम इस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे की कई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम पर असरअंदाज होती हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और जहाँ तक सरकार का तअल्लुक है, हुकूमत इस मामले पर गहरी निगाह रखी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखा ये गया है कि इन तमाम इकदाम के बावजूद डेनमार्क में मुंशियात की स्मगलिंग जो है उस पर मुकम्मल काबू अभी तक नहीं पाया जा सका।
1: और उसके अलावा सिंथेटिक जो है जो मुंशियात वो भी बनाए जा रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि कोकीन या हेरोइन वगैरह का जो इम्पोर्ट किया, तो कई यहाँ पे लोकली जो है मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में जो नौजवान लड़के हैं वो इंटरनेट के जरिए वो देखते हैं कि कैसे ये जो है सिंथेटिक ड्रग बनाए जाए और वो ज़्यादा खतरनाक हैं दूसरी मुंशियात से।
0: इस मामले में बड़ी एहतियात से ये बात करने की इजाज़त चाहूँगा कि यूरोप की जो सबक कम्युनिस्ट ममालिक के ममालिक हैं, ये मशरकी यूरोप के लोग जो हैं वो बड़े पेश हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनमें कई एक तो ऐसे हैं जिनका ताल्लुक यूक्रेन से है।
1: जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात।
0: जी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुतलका महकमों की और ख़ासतौर पर पुलिस की नज़र में हैं, तो इनसे बचने के लिए यही है कि अपने आप को ऐसी जगहों से, ऐसे मुआशरे से, ऐसे लोगों से दूर रखा जाए जो इनमें मुलव्वस है।
1: और ख़ास तौर पे ये वालदैन का भी बहुत ये फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे जो टीनेजर हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ रखें ताकि उनको पता हो कि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं। अगर किसी नौजवान लड़के ने बड़ी खूबसूरत सी गोल्डन चेन ख़रीदी है तो पूछें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, या कोई उन्होंने नया मोटरसाइकिल ख़रीदा, तो ऐसी ये चीज़ें जो हैं जिसमें वालदैन जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल आपने बजा कहा, क्योंकि अगर एक 18-19-20 साल का बच्चा जो है, नौजवान जो है, वो कोई ऐसी चीज़ ले जाता है जो कि उसकी कुवते खरीद से बाहर है और उसकी आमदन जो है उसके लिहाज से वो उसको खरीद नहीं सकता, तो वालदैन का या बुजुर्गों का ये फ़र्ज़ है कि वो उनसे पूछें कि आपने ये कहाँ से लिया है और इसके लिए रकम कहाँ से मुहैया हुई है।
1: नसर भाई, इसी के साथ जो है हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अपने वक्त दिया अपना और इतनी कीमती ख्यालात से जो है नवाजा हमें। तो
0: जाते हुए सिर्फ आपसे एक चीज़ अर्ज करना चाहूँगा
1: प्लीज़,
0: कि दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ नौजवान सियासतदान जो हैं वो निगाह में रखें, कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी को राह पर रखने के लिए उसको नकेल डालना बहुत ज़रूरी है।
1: इससे कोई भी जो है इख्तलाफ नहीं कर सकता, ये आपकी जो राय है बहुत ही खूबसूरत राय है। रज़ा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें नसर मलिक साहब ने और हमने कोशिश की है कि चीज़ा ख़बरें जो हैं डेनमार्क की मालूमात वगैरह अपने सामेईन और नाज़रीन तक पहुँचाएँ। उम्मीद है हमें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा मौजू हो, कोई सवाल हो, तो आप जो है प्लीज़

0: हमारे रेडियो को फ़ोन करके या ईमेल करके हमें ये बताएं तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो जो है मालूमात पहुंचाई जाए। तो रजा भाई आप हमें इजाज़त दीजिए, अब हम जाएंगे बाहर थोड़ा सा सैर करेंगे। तो नाज़रीन सामेईन, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظفر شیخ اور حسب معمول ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موسم باہر بہت اچھا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت ہمارا اسلامی مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی افادیت اور اس مہینے کی مقصدیت آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اس مہینے میں جو ایک سانحہ ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری انسانیت کے لیے ایک قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نسبت سے آج اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس مہینے کے حوالے سے اپنی زندگیوں کو چلا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سہولت ملی ہوئی ہے، اور اس پر ہم کس حد تک کامیاب ہیں اور کس حد تک ناکام ہیں یہ ہم سب انفرادی طور پر خود سمجھ سکتے ہیں۔ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس میں ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے اس مہینے کے حوالے سے، اس قربانی کے حوالے سے، تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں کیا سانحہ ہوا تھا۔ کربلا کا سانحہ آپ بہوبی جانتے ہیں، اور اس کے بعد ڈنمارک کا موسم، بلکہ پوری دنیا میں موسم کافی گرم ہے، اور ڈنمارک کا موسم بھی اس وقت کافی اچھا ہے۔ تقریباً پچھلے ہفتے سے 28-29 ڈگری یہ جا رہا تھا، آج تھوڑا سا کم ہے، لیکن پھر بھی اچھا موسم ہے، اور اس موسم میں تمام لوگ بشمول تارکین وطن بھی اپنے اپنے انداز سے اس دن کو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے کام کے حوالے سے بھی اور اپنے بچوں کے حوالے، فیملی کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام اس میں بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو، پرومیننٹ اور ڈیسنٹ لیڈی، حسب معمول ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ دوبارہ میرے پروگرام میں شامل ہوں، لبنہ الہی صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وی این، ان کی گفتار اور ان کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ بہت اچھا وقت گزارا انہوں نے سیاست کے حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی، اور اس وقت بھی بہت ایکٹیو ہیں اپنے کام کے حوالے سے۔ تو آج کے پروگرام میں ان سے بات چیت ہوگی کہ ان کا وی این جو ہے وہ اس کو مزید کس حد تک وہ وسیع کرنے جا رہی ہیں، اور سیاست کے حوالے سے خاص طور پہ اگر میں پوچھنا چاہوں تو ڈنمارک کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی ان سے بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو لبنہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ دوبارہ آپ کو ہم نے زحمت دی پروگرام میں اور آپ تشریف لے آئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آئی ایم سو ہیپی کہ آپ پروگرام میں شامل ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اس ریڈیو ہم وطن کے بانی اور لوکل میڈیا کے بانی حاجی مصطفیٰ صاحب جو اس وقت اللہ پاک کے پاس چلے گئے ہیں، ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے، اور جہاں انہوں نے یہ داغ بیل ڈالی لوکل میڈیا کے حوالے سے، اس حوالے سے اگر چند الفاظ آپ کی زبان سے اگر ادا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بھی وہ مشعل راہ بھی ہوں گے اور اچھے بھی ہوں گے۔ جی
1: جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں، تو آپ اتنے عزت احترام سے انوائٹ کرتے ہیں کہ میں نہ نہیں کر سکتی، پھر مجھے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ محرم کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ پوری دنیا اس سانحے کو مانتی ہے، لیکن ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو نہیں پتہ، انہیں ایسے اسکول ٹیچر، تو میں یہ کرتی ہوں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کسی وقت جب میرے پاس اردو کی کلاس ہوتی ہے تو میں انہیں چھوٹے امام علی اصغر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ پیاس لگی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا منہ کھولا، رو رہے تھے، تو ظالموں نے تیر سے ان کو شہید کر دیا۔ یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہے کہ ہم جب تک اپنے، ہمیں ایک شدت پسند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور لیکن ہمیں اپنے مذہب کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جو ہے کہ हमारे साबका पीटीआई के सदर इमरान महबूब की एलिया, उनकी वफात हो गई है कुछ हफ्ते पहले। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं और बहुत यंग एज में मेरी बहन जस्ट 41 इयर्स की थी, 41 साल की थी। अभी तो बच्चों के ख्वाब उनकी ये वो जो नहीं, बेचारी कुछ भी नहीं दे सकी, लेकिन जाते वक्त हमारे भाई इमरान महबूब के कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ, जो कि वो अब माँ भी बनेंगे और बाप भी बनेंगे। उनकी छोटी छोटी दो बेटियाँ हैं, गालिबन 3-4 साल की और 6-7 साल की दूसरी। तो सारे सुनने वालों को दरख्वास्त है कि इमरान भाई के लिए दुआ मांगे, उनकी बेगम के लिए दुआ मांगे, इमरान भाई के लिए इसलिए कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे ये सब काम करने के लिए।
0: ठीक।
1: और जी हाजी मुस्तफ़ा अंकल, मैं उनको अंकल जी कहती थी। मेरी उनकी मुलाकात जब मैंने इन्वायरमेंटल लिस्ट बनाई थी 85 ईयर्स अगो,
0: अच्छा,
1: तब मुलाकात हुई थी। और अंकल जी का मेरा मिजाज बहुत मिलता था। हमने जो कहना होता है, हम वो कहते हैं ना, मेरा मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम ज़रा फूल गमले के समेत मार देती हो, तो अंकल भी इसी तरह के थे। मेरे बड़े बड़े उनके साथ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे बहसें वगैरह हुई हैं, लेकिन दिल के इंतहाई साफ, अपने वतन से इंतहाई मोहब्बत करने वाला, चाहे वो पाकिस्तान का जलजला या सैलाब आए, चाहे कश्मीर में आए, अंकल जी ने सबसे आगे खड़ा होना है। फिर अंकल जी वो जब मुझे पसंद नहीं याद, जब ये वेस्टब्रो मस्जिद की बुनियादें डालने के लिए कुछ चंदे वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, क्योंकि वो तो ना, उन्होंने तो कभी क्लेम भी नहीं किया ना, मतलब मैं ये हूँ मैं वो हूँ। किस तरह नैरोब्रो में डोर बाई डोर जाके जो नहीं है चंदे के लिए काम करते थे, शायद वो खुद इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने किया है, एक ऐसा पौधा कि नस्ल बर नस्ल लोग उर्दू ज़ुबान को सुनेंगे। और वो अपने आप को सिर्फ इस्लाम का खादिम कहते थे, मैंने बखुदा उनके मुंह से कभी नहीं सुना। मैं कहती थी, क्योंकि मैं जब वेस्टब्रो की मस्जिद आती है तो मैं कहती हूँ कि ये अपने बच्चों को भी कहती हूँ, ये मेरी मस्जिद है, तो मेरी मस्जिद इसलिए कि मेरे पेरेंट्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो, जैसे कि हमारे घर में 3 फोतगियाँ हुई हैं, मेरे वालदा की, मेरे वालिद की, मेरे हस्बैंड की, तो नमाज जनाजा वहीं पर अदा किया गया। फिर एक ज़माने में उनको कुछ पार्किंग का मसला था, मैं उस वक्त काउंसलर थी, उस वक्त भी जो मेरे से हो सका था मैंने किया। लेकिन अंकल के मुंह से मैंने नहीं सुना कि जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ। वो बेचारे सीधे साधे से इंसान थे, उनको यही था कि ये कहते पुत्र मस्जिद बाद रहनी चाहिए थी, मस्जिद बाद रहनी चाहिए। और वो कोई जैसे नहीं होता, कोई सोच के बयानी आदमी तैयार करता है, अंकल की ये नेचर नहीं थी, उन्होंने बस जो कहना है सीधे दिल से कह देना है।
0: बिल्कुल,
1: अल्लाह ताला उन पे रहमत करे, उनकी कब्र को कब्र के जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। लेकिन अपने पीछे जो नहीं है, वो एक ऐसा पाकिस्तान छोड़ के गए हैं कि जैसे कि वो पाकिस्तानियत की बुनियाद रख के गए हैं, कि जुबान के बगैर कुछ नहीं है। हमारे बच्चे, चाहे अभी पहली जनरेशन के या दूसरे लोग घर के बड़े सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे स्टून में बैठे हुए हैं ना, उनके सब कॉन्शियस में उर्दू जा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और ये काम ऐसे प्लान करके नहीं रख सकते, अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया था, और जो खुदा के प्यारे लोग होते हैं रब उनको वसीला बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती
0: जी। बिल्कुल जी, हाजी साहब के खिदमात और उनके काम, उनका किरदार हमेशा के लिए हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। और जो उन्होंने सदका जारिया हमारे लिए छोड़ गए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म की सूरत में, अपने बच्चों की सूरत में, और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे उनके बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी, ख़ास तौर पे रज़ा मुस्तफ़ा साहब का, अगर मैं, क्योंकि मेरा इनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है जब मैं डेनमार्क में आया। इससे पहले इनके बड़े भाई, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, सुना मैंने, और मिलता भी उनको, लेकिन रज़ा साहब भी अच्छे तरीके से अपने खिदमात को पेश कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए सदका जारिया की सूरत में ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। और सादगी या पढ़ाई का तल्लक मैं समझता हूँ खिदमत से तो नहीं होता। खिदमत अगर आप जैसे आपने फरमाया कि दिल से अगर कोई कर रहा है या अपनी नेक नीति के साथ कर रहा है तो उसमें डजंट मैटर के वो
1: नहीं, अल्लाह ताला के रास्ते खोलता है,
0: रास्ते खोलता है आप बिल्कुल। तो अल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला चलता रहे। तो चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं कि जो हमारा कोर इशू है इस वक्त, डेनमार्क की हुकूमत इस वक्त तश्कील पा चुकी है 69 डेज के बाद, 69 दिनों के बाद। तो इस हुकूमत को एक तो लुबना साहिबा ये बताएं कि इतना अरसा क्यों लगा और इसमें क्या कुछ नई चीज़ें कोई उन्होंने जन्म लिया जिसकी वजह से इतनी डिले हुई, क्योंकि इससे पहले हुकूमतें 2 महीने के अंदर अंदर बन जाया करती थी और ये हुकूमत अगर बनी है 69 दिनों के बाद तो इसमें क्या कुछ आपने महसूस किया अपने विजन के मुताबिक बताएं।
1: इसमें बहुत तोड़ फोड़ हुई नहीं, डेनमार्क आइन कहता है कि आपने 2 महीने के अंदर जो नहीं है अपनी हुकूमत को तश्कील देना है। डेनमार्क का आइन ये भी कहता है कि आपने मंडेट ज़ाया नहीं करना, यानी आपने ये नहीं कहना कि हम तो 2-3 इकट्ठे हैं, तुम हमें पसंद नहीं, तुम नहीं शामिल हो सकते। और मामला जो इलेक्शन का हॉट इशू था, जिस तरह के पिछले कई दफ़ा हुआ है, वो था तारकीन वतन से मुतल्लिका पॉलिसीज। तो इसलिए ये कोई इतनी हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि सोशल डेमोक्रेट ने गैर मुल्की दुश्मन पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया था उन इलेक्शन के दौरान भी, जो नहीं ऐसा ही था। मेटर फर्गसन ने न्यूयॉर्क की तकरीर में यहाँ तक कह दिया था, हाथ नहीं जोड़े थे फिज़िकली ऐसे, कि भी जी जो तुम सोने की चेन पहनने वाले और जो तुम मुसलमान हो, खुदा के लिए चले जाओ। और वक्त के साथ से वो अपनी जो है अपना झुकाव हर तरीके से इसराइल के बारे में बात करती हैं। अभी कल परसों एक रेडियो का टीवी का इंटरव्यू था, तो उससे एक जर्नलिस्ट पूछता है कि तुम्हारी आइडियल कौन है, वो जवाब में कहती हैं इसराइल की पहली खातून सदर गोल्डे मैया। और आपको अच्छी तरह पता है वो तो जो फ़लस्तीन की पॉलिसीज़ में इसराइल की जो भी कहानी उसमें दिलचस्पी रखती हैं कि उन्होंने बहुत कत्लो गारत किया था। तो अगर हमारे एक डैनिश जो है वज़ीर आज़म है, उसकी आइडियल ये है, तो फिर आप अपने आइडियल को ही फॉलो करते हैं ना। दूसरी तरफ मैं लास लुके को लूँगी, लास लुके को मैं जब वो कंसर्वेटिव था तब से जानती हूँ, 25-30 सालों से।
0: अच्छा।
1: लेकिन पहली बात है कि जब वो वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो मैं समझती हूँ चाहे अपने मतलब के लिए चाहे कह लें किसी भी वजह से, उनके रवैये में बहुत फ़र्क आया। ये जो कुरान लॉ जिसको कहते हैं कि आपको कोई भी मजहबी किताब जलाने की इजाज़त नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत एक मेल रोल अदा किया है। मैंने उन्हें शुक्रिया का ख़त भी लिखा था, मैंने फूल भी भेजे थे कि थक फॉर सामले डेनमार्क, के आपने डेनमार्क को एक प्लेटफॉर्म पर बैठा किया, थैंक यू। वरना जो खबरें वो आ रही थी, पुलिस वाले जो नहीं हरासा थे कि एक अंदरून शहर में एक पैरलर फौज तैयार हो रही थी तारकीन वतन लड़कों की खास करके। तो मैं खुद कोपनहेगन की रिहायशी हूँ और मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, मैं नहीं इस तरह की कोई गड़बड़ चाहती, और जो जो करता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद एसएफ पिछले कई सालों से बिल्कुल जिस तरह नहीं, यस सर का उसका रवैया, वो एसएफ चली गई जो कि जिसकी मैं एक दफ़ा मेंबर थी, एसएफ की जो खातून अव्वल है वो कुछ भी नहीं कहती, वो कुछ भी नहीं बोलती। मुझे याद है कि जब हिजाब ममनू किया गया था तो सबसे पहला बयान उनका था, जिसके जवाब में पुलिस ने ये कहा था क्या हमारे पास और कोई काम नहीं कि हम जिस खातून ने हिजाब पहना हम उसको पकड़ें और उसको जुर्माना दें। हालांकि नंबर ऑफ लेडीज़ थी पूरे शहर में जो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं निंजर टाइप, नहीं कि आंखें सिर्फ नज़र आ रही हैं जिस्म नहीं नज़र आ रहे, उसमें
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ता रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूदात सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब मौजूदात पर बातचीत करने के लिए, राय लेने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं टेलीफोन पर। लेकिन इससे पहले कि हम नसर मलिक साहब को ज़हमत दें, हम आपके साथ कुछ छोटी छोटी मालूमाती खबरें सेहत के बारे में और अपने माशरे के बारे में जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप सब अभी देख रहे हैं कि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है इस वक्त पूरे यूरोप में और फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हत्ता के डेनमार्क में अभी 36 डिग्री टेम्परेचर था कल। और ये कहते हैं 80 साल में पहली दफ़ा इतनी गर्मी पड़ी है। और आज जब हम लोग रेडियो पर आए हैं तो अभी रेडियो पर बैठे भी हम पसीने में नहा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये चलता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस हीट वेव से बचने के लिए आप अपनी तैयारी करके बाहर जाएं और ज़्यादा धूप में नहीं बैठें या बीच वगैरह पे लेटने से पहले आप कुछ क्रीम वगैरह लगा लें और पानी ज़्यादा पिएं। आप जितना भी पानी पी सकें वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो आपका डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो ये इसके बाद जो है हम आपके साथ फेसबुक के बारे में एक बात करना चाहते हैं। वो ये है कि फेसबुक ने जो है एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है

0: हुकूमत ने जो है महकमा सेहत के साथ मिल के एक नया सेंटर बनाया और कैंसर के हवाले से भी एक नई खबर आई है कि अभी काफ़ी सर्वे किया गए हैं जिस ख़ास तौर पे डेनिश और गैर मुल्की जो साइंसदान हैं और जो रिसर्च हैं उन्होंने ये मालूम किया है कि आप जब कुछ खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसी स्टफ़ होता है, इसमें चीज़ें होती हैं जिससे आपको कैंसर होने का ख़तरा होता है। तो ये जो नई रिसर्च आई है इससे अब पता चलेगा कि इसका जो है इसके साथ किस तरह इसको इस चीज़ को ठीक किया जाए। एक मोटापे के बारे में आपको पता है कि एक ख़ास इंजेक्शन है ओज़ेम्बिक और वेगुनी, वो लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन को अपना वज़न कम करने के लिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके कैंसर भी होने का ख़तरा है। तो इसके लिए प्लीज़ जब आप डॉक्टर से बात करें तो उसके साथ पूरी तफ्तीश से बात करें, क्योंकि वज़न कम करना अच्छी बात है लेकिन यह वज़न कम जो है वो इंजेक्शन के अलावा एक्सरसाइज से, खाना सही खाने से और एक्टिविटी करने से जो है ना वज़न आपका कम हो सकता है। आखिर में एक और मसला जो है जिस पे हम आपके साथ बात करना चाहते हैं कि कई बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो जल्दी से उनको थकन हो जाती है, वो जो फटीग होती है उससे ही होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आप किसी चीज़ पे जब आप देखते हैं या उसको पहचानते हैं उसमें कमी हो जाती है। आप कई दफ़ा आप चश्मा ढूंढ रहे होते हैं और चश्मा लगा होता है, या आप जूते पहन रहे होते हैं, जुराबें पहनी होती हैं और आप देख रहे हैं जुराबें किधर हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो इसके लिए भी जो है अब बिस्पेबिया हॉस्पिटल में एक उन्होंने रिसर्च की है कि इस के जो है असरात क्या हैं और इससे डिप्रेशन भी हो सकती है, डिमेंशिया भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि डेनमार्क में सेहत के हवाले से बहुत ही रिसर्च होती है और कोशिश की जाती है कि लोगों की जो मुख्तलिफ बीमारी हैं उसका इलाज किया जाए। तो रज़ा भाई, ये था सेहत और मालूमात के हवाले से छोटी छोटी खबरें। अब हम चलते हैं अपने मोहसिन आज़िम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ। नसर भाई, कल का बहुत बहुत शुक्रिया और आज का सलाम आपको।
1: जनाब बड़ी मेहरबानी, कल आपने वाकई ही गरीब खाने की शान बढ़ा दी और ख़ास तौर पर आपकी जो गुफ्तगू रही डेनमार्क के हवाले से और तारकिन वतन के हवाले से, उससे मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ और फिर मेरी तनख्वाही का एहसास जो था वो भी डटा रहा। और शौकत साहब तो हसब तौफीक जैसा कि वो करते हैं उन्होंने हम दोनों की खबर भी दी और अपने वसी मुताले के बुनियाद पर उन्होंने जो इकबाल के हवाले से और इस तरह खुदी के हवाले से और इंसान को इंसान समझे जाने के हवाले से जो बातें की वो सब बड़ा अच्छा था। अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, बातें जाते रहिए।
0: बिल्कुल जनाब, हम आपकी खिदमत में जब भी हम ये समझते हैं कि कोई अच्छी बातचीत हो, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे तबादला ख्याल हो, तो सबसे पहले जिसका ख्याल आता है वो आपका ही ख्याल आता है। थोड़ा सा यह कि आप दूर रहते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कोपेनहेगन खींच के लाएँ ताकि आपसे ज़्यादा मिला जाए।
1: अल्लाह आपको खुश रखे। और ये जो तो आपने मुख्य खबरें पेश की हैं
0: जी,
1: ये बड़ी अहम खबरें हैं, ख़ासतौर पर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, बुज़ुर्ग का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, अब हम खुद भी तो उसी उम्र में हैं
0: जी, हमें
1: इस तरह ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मामूली सी चीज़ जी भी जो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जहन के अंदर ऐसा महसूस हो कि ये क्या हो रहा है, तो इस क्या हो रहा है को मामूली नहीं लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और ख़ास तौर पर अपने फैमिली के साथ बात करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और नसर साहब, पाँव की जो प्रॉब्लम है जिन लोगों को वो डायबिटीज़ की वजह से या और किस वजह से पाँव में तकलीफ़ होती है, वो फिर चल नहीं सकते, फिर वो घर ही बैठे रहते हैं और उससे फिर उनको और मुसीबत पड़ जाती है।
1: और इससे पहले कि आप किसी दूसरे मौजू की तरफ जाएं
0: जी,
1: अभी आपने जो किसी एक डैनिश खातून से जिस मौजू पर प्रोग्राम बनाया है
0: जी,
1: ये मौजू ये चीज़ जो है ये हम तारकिन वतन खानदानों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है।

0: बढ़ गया है। अब चिली के तीन बच्चे जो यहाँ पे अडॉप्ट किए तो उन्होंने डेनिश स्टेट पे भी मुकदमा कर दिया।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा, और ये एक बड़ा जुर्मनाना एग्जाम है। मैं फिर आऊंगा आपने सामने की तरफ जो रेडियो हमवतन से मुंसलिक हैं, सुन रहे हैं कि घबराएं नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ जो जो चीज की जा रही है वो उसका उसकी कोई वजह ही नहीं है, तो आप बाकायदा अदालत में जाए।
0: हाँ, डरे नहीं, बिल्कुल
1: डरे नहीं, और इस बात को मत समझे कि खुदा न खास्ता आपको मुल्क से निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, आपकी बदनामी होगी। बदनामी नहीं होगी।
0: जी जी बिल्कुल, बिल्कुल।
1: आप अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज जो है ये हमें समझ लेनी चाहिए कि डैनिश हुकूमत को या डैनिश मुतल्लिका अहदेदारान को इस तरह का दुरुस्त देना, ये कोई तोहीन, ये कोई बदनामी नहीं है, और इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपका हक है। और हक यहाँ डेनमार्क के माशरे में अब जैसी सूरत हाल है ये मिलता नहीं है, ये छीना जाता है।
0: ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और सपोर्ट करूँ तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक हॉट लाइन जो है वो बनाई है काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपने लोगों को, क्योंकि मैं ख़ुद ह्यूमन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट के बोर्ड में हूँ, तो हमारे लोग शिकायत नहीं करते, वो डरते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट आपके साथ खड़ा हुआ है, और उस हॉट लाइन जो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, खा वो काम की मंडी में हो, खा आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आपके नेबर ने, या कहीं और भी आपके साथ जाती हुई है, तो आप उसको टेलीफोन कर सकते हैं। और उसका नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ, 32 69 86 66 3269 8666। और आप इस पे दिन के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मंडे से लेके थर्सडे तक जो है आप रोज़ाना इस पे टेलीफोन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं, और इंस्टीट्यूट का जो अमला है वो उस शिकायत को बड़े सीरियसली लेंगे, और वो आपकी मदद भी करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये केस को आगे बढ़ा जाए तो इंस्टीट्यूट जो है आपको लीगल मदद भी देगी। अब ये जो है मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे लोगों को ये चाहिए कि खुदारा खुदारा जब आप ये समझें कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है किसी किस्म की, प्लीज़ आप उसकी शिकायत करें। और अभी तो मैं जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट जो है उनकी ये हॉटलाइन है, और उसको भी प्लीज़ आप इस्तेमाल करें।
1: बहुत अच्छा किया आपने ये निशानदेही की, और हमारे सुनने वाले जो हैं वो यकीन इससे इस्तेफादा करेंगे, और करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: दूसरी बात, मैं आपके तवस्सुत से और रेडियो हम वतन के तवस्सुत से एक मरतबा फिर पाकिस्तान सोसाइटी के जनाब विराज खान चौधरी साहब को ये मतवज्जो करना चाहता हूँ, उनको अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाब आपकी तरफ पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो पिछले 40-45 साल से आप उस पर बैठे हुए हैं, वक्त आ गया है कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारे डैनिश माशरे में जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करने के लिए वही जज्बा जोर और वही ताकत इस्तेमाल करें जो पहले की जाती थी। और इसके लिए आप हमारी बरादरी ही से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, खासतौर पर जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको बुलाएं और उनका इजलास करें और उनकी राय सुनें कि वो इस वक्त सोशल डेमोक्रेट पार्टी की मकलूत हुकूमत की तरफ से कारकिन वतन और हम मुसलमानों के मुतालिक जो जहर उगला जा रहा है उसके तदारक के लिए क्या कर रहे हैं।
0: ये बहुत खूबसूरत तजवीज़ है, और मैं कोशिश करूँगा कि राज खान साहब से जो है कांटेक्ट करूं और उनसे मुलाकात करके उन तक आपकी जो ये ख्वाहिश है इसका इजहार करूं। अच्छा, अब अगर हम बच्चों की के हकूक की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक और मसला जो है अभी सोसाइटी में काफ़ी उस पर बहस हो रही है, वो ये है कि बहुत से वालदैन, और सिर्फ ये गैर मुल्की वालदैन ही नहीं बल्कि डेनिश वालदैन, सब वालदैन जो है वो इस चीज़ से बड़े नाला हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे और डिजिटल गेम जो है बहुत खेलते हैं, और घंटों घंटे जो है वो इसको इस पे ज़ाया करते हैं। और ये एक रिसर्च भी जो आई है उसमें ये बताया गया है।

0: اور حکومت چاہتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے روکا جائے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ 70% والدین جو ہیں ان کو یہ فکر ہے. لیکن ڈنمارک جو ہے اس میں اس قسم کے قوانین بنانے سے ہچکچاہٹ ہے, جس میں لوگوں کو کہا جائے یہ تم نہیں کرو یہ نہیں کرو, اور یہ قانون ہے, لیکن قانون کے بغیر تو پرابلم ہو جائے گا.
1: آپ نے بالکل بلا کہا. دیکھیے, یہ جدید ٹیکنالوجی کے ضمن میں آئی فون اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے متعلق کئی ایک ممالک میں, جن میں برطانیہ بھی شرح فہرست ہے, آپ نے یہاں پابندیاں لگا دی ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو کس طرح استعمال کریں اور کیوں استعمال کریں اور اس سے کس طرح بچا جائے. اور یہ چیز جو ہے یہ ڈنمارک میں بھی بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے. بچے جو ہیں خاص طور پر وہ بہت زیادہ وقت ایسی باتوں پر صرف کرتے ہیں اپنے آئی فون پر, مثال کے طور پر جن کا کوئی طلب نہیں ہوتا ڈیلی لائف سے, اور اپنی وہ تمام تر توجہ جو ہے وہ ادھر مبذول کر دیتے ہیں, اور اس طرح وہ قدرتی سوچ جو ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے
0: جی,
1: اور جس کے لیے وہ اپنی سوچ کی بنیاد پر اقدامات لینا ضروری سمجھتے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ آئی فون کے اور انٹرنیٹ کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں. اور اس بات کو روکنے کے لیے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ڈنمارک میں فی الوقت اس طرح کے اقدامات نہیں لیے جا رہے جس طرح کے ڈنمارک کے پڑوسی ممالک میں اور یورپی یونین میں لیے جا رہے ہیں. ہاں, سیاستدان بات ضرور کرتے ہیں, خرچہ ضرور کرتے ہیں, لیکن ان قوانین کا انتظار کیے بغیر اصل بات جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کتنا وقت ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, وہ کون سی کمی ہے جو ان کا یہ آئی فون پورا کر رہا ہے اور گھر میں اس پر بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی.
0: اچھا, ڈینش میڈیا کونسل ہے ڈنمارک میں, انہوں نے جو ہے ایک گائیڈ لائنس دی ہیں پیرنٹس کے لیے, اس میں 5 جو ایڈوائس دیے ہیں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو وہ ڈینش میڈیا کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس میں چلڈرن اینڈ ینگ پیپل کا جو سیکشن ہے اس میں جا کے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگلے ہفتے ہم جو ہے وہ ان تجاویز کا بھی ذکر کریں گے, لیکن کیونکہ ہم نوجوانوں کی لیے بات کر رہے ہیں تو ایک اور خبر جو آئی ہے وہ تھوڑی سی عجیب بھی ہے, لیکن ایسا تو ہونا تھا جب فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 16 سے 25 سال کی عمر جو ہے اس کی تعداد جو ہے نوجوانوں کی وہ 2036 میں بہت کم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بچے زیادہ نہیں پیدا کرتے, اور آج سے 10 سال, آنے والے 10 سال میں, اب تو 2026 ہے, تو تقریباً 66,000 کم ینگ لوگ ہوں گے ڈنمارک میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے پیدا نہیں کرتے اور آپ کے نوجوان جو ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی, تو اس معاشرے میں آگے بڑھانے کے لیے پھر غیر ملکی ہی آپ کو لینے پڑیں گے, اور پھر ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ آپ کو دوسرے ممالک سے لیبر بھی لینی پڑے گی. تو یہ مسائل جو ہیں, ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگ زیادہ بچے ان کے نہیں ہوتے تو اس سے وہ تعداد کم ہو جاتی ہے, پھر لوگ زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں تو ان کی جو پینشن وغیرہ اور ان کی محکمہ صحت کے لیے لوگ نہیں ملتے, تو یہ مسائل جو ہیں یہ پھر ڈبل مسائل ہو جاتے ہیں.
1: آپ نے بالکل بجا کہا. ڈنمارک کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے, آج سے نہیں بلکہ کم و بیش ایک صدی پہلے سے.
0: جی جی,
1: اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر کے دروازے تو کھول دیتے ہیں, لیکن جب اس دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ پھر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ اس کی مثالیں یہاں ڈنمارک میں بہت پہلے سے موجود ہیں.
0: ویری ٹرو.
1: آپ کو یاد ہے پولینڈ سے لوگوں کو جب بلایا گیا قدیم زمانے میں کہ وہ یہاں پر آ کر کھیتی باڑی میں ہاتھ بڑھائے, تو انہیں پلاکا کہہ کر ان کی تصدیق کی
0: گئی.
1: اسی طرح جرمن لوگوں کو جب جہاں بلایا گیا کہ وہ آلو کی کاشت میں ہاتھ بڑھائیں تو ان کو کٹھا پرتوسکا کا نام دیا گیا.
0: ایگزیکٹلی.
1: اور پھر ہالینڈ کے لوگوں کو, جن کی یاد میں آپ کے آما میں ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں,
0: اور پوری کالونی ہے وہاں پہ تھونبی میں. جی جی,
1: بالکل. بجا کہا آپ نے, جب ان ہالینڈ کے لوگوں کو بلایا گیا तो उन्हें स्पेस को ड्राइंग कहा गया, क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए अपने मखसूस जूते पहनते थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और हमारे मुताबिक भी आप देखते हैं कि किस किस तरह से नामों से हमें पुकारा जाता है। तो ये सारी बदनीति पर मुश्तमिल ये जो रवैया है, ये डेनमार्क के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सन 2036 तक तो इनके नौजवानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, बल्कि वो रहेंगे नहीं। तो इस नस्ल को आगे चलाने के लिए या तो आप जैसा कि आपने कहा कम बच्चे पैदा ना करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन ये बच्चे जो है अब ऑटोमेटिक मशीनों में तो पैदा नहीं होते। और इस कमी को, इस अफराजी कमी को पूरा करने के लिए आपको जब गैर ममालिक से सहारा लेना पड़ता है, तो उन बुलाए गए मेहमानों को कम अज कम वो तज़ीम और वो इज्जत दें जिसके वो हकदार हैं।
0: ये मसला जो अभी आपने उठाया नसर भाई, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे आए थे 70 की दहाई में, तो हमें कहा करते थे फ्रामा आबायता, फिर उसको कहना शुरू किया गेस्ट आबायता, और उसके बाद कहना शुरू किया इनवान दफलुतनीगा। फिर जब हमने अपने सियासी कोशिशों से उसको एथनिक मिनोरिटीज़ कहलवाया, उसके बाद अब वो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, छोटी सी किताब, उसका नाम उनवान है फ्रामा अबायता थी मुस्लिमा। तो अब वो लफ्ज़ मुस्लिमा जो है वो एक सबके लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया इन लोगों ने ना। तो ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है कि अगर किसी को बुलाते हो तो उसकी इज्जत करो, उसकी अप्रिशिएशन करो। और ये एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और अभी भी आपके साथ शेयर करूँगा, और मैंने कई दफ़ा डेनिश सियासतदानों को भी कहा है कि खुदारा तुम तनकीद ज़रूर करो, लेकिन इंडिविजुअल पर तनकीद करो, ग्रुप तनकीद नहीं करो। कि कोई ग्रुप में दो शख्स एक ऐसी बातें नहीं करते जैसे आप कह रहे हैं।
1: दूसरे एक फर्द के इंसादी फेल को आप ये न बताएं, ये इस पूरी बरादरी का ये रवैया है।
0: एग्जैक्टली
1: ऐसा नहीं है, क्योंकि कई दानिश जो है ना, अगर हम तरफ देखें तो अगर कोई एक दानिश इस तरह का कोई काम करता है जो कानून की नजर में जुर्म है, तो क्या हम ये कह देंगे कि ये सारे दानिश इसी तरह है? बिल्कुल नहीं।
0: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके अलावा देखिए एक चीज जो मुझे बड़ा दुख होता है, जिसका मैंने इजहार किया, आप भी इजहार करते रहते हैं, कि अगर तनकीद ज़रूर करो लेकिन साथ साथ जो है तुम तारीफ भी करो उन चीज़ों की जो गैर मुल्कियों ने इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन की है उसकी।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा। इसके लिए आप देखिए डैनिश इंडस्ट्री जो है, डैनिश इंडस्ट्री की जो कौमी तंजीम है DI,
0: जी जी,
1: उसकी आप रिपोर्टें देखें और महकमा टैक्स की रिपोर्टें देखें, कितना टैक्स के मद में गैर मुल्कियों ने सरमाया मुहैया किया,
0: अरबों अरबों करोड़ जी,
1: अरबों डॉलर करोड़ जो है मुहैया करते हैं। और जब ये आपके लिए इस तरह की आमदन का जरिया है, ये आमदन आपने वो मेहनत और मशक्कत से पैदा करते हैं, तो फिर आपको इतराज क्या है? और जब वो मेहनत और मशक्कत करते हैं तो वो आप ही की इंडस्ट्रीज को, आप ही के रोजगारी अदारों को तकवीत पहुंचाते हैं।
0: अच्छा, एक और ख़बर है जिस पे मैं आपके रह लूँगा, वो ये है, ये सियासतदान जो है ना, मैं क्या कहूँ इनको, वो अब कुछ सियासतदान ख़ास तौर पे लोकल सियासतदान जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे जो गरीब फैमिली से होते हैं और जो अपनी तालीम में अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से हमारे स्कूल जो हैं उनकी जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत एक ऐसे कानून बनाए कि हम ऐसे बच्चों को जो है, जो कि तालीम को ख़राब करते हैं दूसरों के लिए, उनको स्कूल से ही निकाल दें, अंदाज़ा लगाएं, बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें, आप उनको स्कूल से निकालने के लिए कह रहे हैं। और वो अब बात तो उन्होंने वैसे नॉर्मल की है, लेकिन ये बच्चे जो हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो बच्चे टर्किश, पाकिस्तानी, अरबिक, ये उनकी तरफ इशारा है, क्योंकि ये और उस कमून में जो है ये कहा गया है।
1: मैं इसी तरफ आने वाला था कि ये तजवीज़ जो है ये बज़ाहिर तो हर एक का अहाता करती है, लेकिन इसका निशाना जो है वो असल हदफ जो है
0: जी,
1: वो जाति में पसंद अच्छा है।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही वजन बच्चों के साथ अगर ये शुरू रखा जाए, खुदा नखास्ता वो किसी तरह से क्लास में ठीक नहीं है, ये कुछ ऐसे अवामन पैदा करते हैं कि उनको बिल्कुल स्कूल ही से निकाल दिया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: स्कूल ही से निकाल दिया जाए कि बजाय अगर उनकी वहाँ स्कूल ही में तरबियत की जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ कैसे रहा जाए, और खुद वालदैन भी इन चीज़ों पर निगाह रखें, ये बहुत ज़रूरी है। वालदैन का निगाह रखना कि वो बच्चा स्कूल में क्या करता है, उसके स्कूल की सूरत हाल क्या है, ये जानना और इस पर इसकी इसलाह करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कह देना कि ये बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ये तो वो दौर, उस दौर की बात हो रही है जब अभी डेनमार्क में तालीम का ये सिलसिला नहीं रहा था। आपको याद होगा कि यहाँ भी बच्चों को स्कूलों के अंदर एक मखसूस कमरा हुआ करता था, किसी ज़माने में वहाँ बंद कर दिया जाता था चंद घंटों के लिए,
0: और कई दफ़ा कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता था वो।
1: तो ये चीज़ जो है, ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर गैर मामूली दिखाई देती हैं, लेकिन ये अपने अंदर एक ऐसा इज्तमाई तासर रखती हैं कि ये गैर मुल्की जो है यही, और इनके बच्चे जो हैं यही मिसाइल की जान है।
0: अच्छा, ये चीज़ जो है रजा साहब के साथ भी हुई है, वो भी नौजवान है, यहीं पैदा हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया बाशी साहब और नसर साहब। ये बच्चों को स्कूल में जो उनकी ध्यान नहीं लगता या नहीं पढ़ाई करते, उसमें बेसिकली मेरे ख्याल में जो एक मेन है, एक तो बच्चे होते ही शरारती हैं ख़ासतौर पर लड़के, लेकिन जो उस्ताद हैं उन्होंने अपना एहतराम जो होता है, जिस तरह हमें सिखाया जाता है कि आपका जो उस्ताद है उसका एहतराम, उसका रुतबा उतना ही है जितना आपके माँ बाप का है, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपने उनकी बात माननी है। तो वो चीज़ ये समझाने में जो है वो कासर है कि उस्ताद का रुतबा क्या है। मैंने एक डेनिश आर्टिकल, मुझे याद नहीं कौन सी अखबार में पढ़ा था, कि एक यहाँ पे जो कोई इस्लामी स्कूल है यानी प्राइवेट स्कूल, उसने जो है वो अपने बच्चों को ये बताया कि उस्ताद का रुतबा क्या है, और वो बच्चे बनिस्बत डेनिश फॉल्क स्कूल के बच्चों के साथ जो है उनका जो मुवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनका अपने उस्ताद के साथ और तालीम में और क्लास में जो बैठ के तवज्जो से बात सुननी है, वो उसका कितना फ़र्क पड़ता है।
0: जी वो एक सर्वे भी हुआ था यहाँ पे इसी बात पे। हाँ बिल्कुल,
2: तो ये है कि एक तो वालदैन की बच्चे नहीं सुनते क्योंकि स्कूल में बताया जाता है कि आपके बच्चों का कोई राइट नहीं है, माँ बाप का कोई राइट नहीं, अगर कोई करते हैं तो आप जो है वो स्कूल में बताएं या इस नंबर पर फ़ोन करें। तो यानी ना माँ बाप के कोई राइट्स हैं ना उस्ताद के कोई राइट है, और फिर कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनकी परवरिश गलत हो रही है।
0: अच्छा आप ये बताइए कि आपके तीन बच्चे हैं
2: जी
0: छोटी उम्र के, उनके साथ आप कैसा रिलेशनशिप है?
2: नहीं बच्चा रिलेशनशिप तो वही है कि जिस तरह एक तो आप माँ बाप की तरह उनके साथ सख्ती भी करते हैं, लेकिन आप उनकी बात मानते भी हैं, छुट्टियों भी लेके जाते हैं, उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात है वो भी पूरी करते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं
0: जायज़ ख्वाहिशात क्या मतलब?
2: यानी जिस तरह कोई अगर वो कहीं छुट्टियों पे ख़ास जगह पे जाने जाते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
2: यानी इस तरह की चीज़ें जो है वो कपड़े ख़ास ले लिए, या यानी जो उनकी जायज़ जो आप समझते हैं कि हर माँ बाप या हर घर का एक अपना एक माहौल है, वो अपने तरीके से समझते हैं कि जायज़ और नाजायज़ क्या है, जो हम शायद समझते हैं जायज़ हैं वो शायद दूसरी फैमिली
0: से। स्कूल मीटिंग में भी जाते हैं?
2: बिल्कुल बादशाह साहब, वो तो सबसे अहम है कि आपको वहाँ पर जाके पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो किस लेवल पे है, लेकिन उसके दौरान भी पता चलता रहता है, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं या असातिज़ा आपको बताते हैं कि ये आज स्कूल का काम नहीं किया, या आज ये गलती हो गई, या आज ठीक हुआ है, आज इसने ये अच्छा काम किया, तो यानी वो आपको फीडबैक जो है वो तकरीबन जो है वो साथ साथ मिलता रहता है।
0: तो क्या आप समझते हैं कि जब बच्चे घर आते हैं स्कूल से तो पेरेंट्स को उनके साथ बैठ के आधा घंटा एक घंटा पूछना चाहिए स्कूल में क्या हुआ, तुमने क्या पढ़ा, ऐसी ऐसा होना?
2: बच्चे साथ बच्चों के साथ बैठ के तकरीबन आधा घंटा जो है वो लाजमी आप स्कूल का काम करें उनके साथ, उनको 20 मिनट कहते हैं स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं ख़ासतौर पे, कि उनको पढ़ना चाहिए यानी रीडिंग जो होती है।
0: तो ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो आप वाली नस्ल है, ये कर रही है?
2: भाई साहब हम तो कर रहे हैं, बल्कि अब तो हमारे बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं, तो हम नौजवान तो उस तरह अब नहीं रहे, लेकिन यह है कि जो यहाँ का एक माहौल है, जो सिस्टम है, वो खुद बहुत कंफ्यूज है कि करना क्या चाहते हैं वो, यानी माँ बाप के भी राइट्स ले लिए, उत्साह के भी राइट्स ले लिए, और बच्चों को भी उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे भी ये मतवक्का करते हैं कि ये भी कुछ जो है वो बनेंगे और कुछ करेंगे।
0: नसर भाई, आपकी कीमती राय क्या है? अभी राजा ने जो कहा है कि एक तरफ तो आप बच्चों को स्कूल में कहते हैं कि तुम्हारे हकूक़ हैं और तुम अपने वालदैन की अगर कोई ऐसी तो आके बताओ, और साथ में फिर शिकायत ये भी करते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे और वो उनका ध्यान कहीं और लगा, तो ये जो डुप्लीकेट थिंकिंग है इसके बारे में आप क्या समझते हैं?
1: मैं समझता हूँ कि रजा ने जो बात की है उसके बाद कुछ कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: दो तीन चीजें जिसका आपने भी इशारा किया है वो बहुत अहम है कि बच्चों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा जाए, बच्चों के साथ कम अज कम शाम के खाने पर जब आप टेबल पर बैठते हैं तो उनके मुताबिक बात करें, उनसे पूछें स्कूल आपका कैसा, आपका दिन कैसा गुजरा, और जो खास तवज्जो जिसकी तरफ रजा ने बड़ी जोर देते हुए शायद तवज्जो दिलवाई है वो ये है कि जो स्कूल की मीटिंग्स होती हैं जिनमें वालदैन को तलब किया जाता है कि वो भी हिस्सा लें, उनमें लाजमी शामिल हों
0: जी,
1: क्योंकि वहाँ अक्सर बेशतर ये होता है कि तो पहली नस्ल के जो जो जो हमारे बहन भाई थे वालदैन जो थे वो शायद इन मीटिंगों में इसलिए नहीं जाते थे कि जुबान नहीं आती है, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं
0: जी जी बिल्कुल
1: वो उनको तो अब जुबान का कोई मसला नहीं रहा।
0: वैसे
1: हमारे कई गैर मुल्की और खासतौर पर 4-5 पाकिस्तानी नौजवान तो ऐसे निकले हैं कि उन्होंने डैनिश जुबान पर महारत और डैनिश जुबान से आशनाई के हवाले से पूरे मुल्क में
0: दर्शकों
1: को बात कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा नसर भाई, आपका हमने बहुत वक्त लिया, एक दो छोटी छोटी और ख़बरें उसके बाद हम आपसे इजाज़त मांगे। सबसे पहले तो ये है कि अभी नई हुकूमत जो है उसमें कुछ सियासी पार्टियाँ जो हैं वो गैर मुल्कियों के हकूक की बात करती हैं, और अभी जो ये 4 पार्टी हैं जो हुकूमत में शामिल हैं उसमें से 3 पार्टियों ने ये कहा है कि वो ये चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं नौजवान बच्चे उनको डेनिश शहरियत लेने के लिए जो है कवानीन में नरमी कर दी जाए ताकि उनको जल्दी से या आसानी से सिटीजनशिप मिल जाए। इसके बारे में तो एक ये तो अच्छी बात कही होगी,
1: अगर अच्छी और एक खुशाइन बात है, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये है कि 3 पार्टियां मिलकर ये तजवीज़ पेश कर रही हैं या ये मुतालबा पेश कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: और अगर ऐसा हो जाए तो ये हर वक्त जो तलवार सर पे चढ़ी खड़ी रहती है ये ख़त्म हो जाएगी, और इन बच्चों में ये एहसास पैदा हो जाएगा कि इन्हें मुआशरे में आगे बढ़ने के लिए बराबरी के मौके भी मिल रहे हैं, और ये जो शरीयत का कानून जो सख्त से सख्त तक किया जा रहा है आप तो जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि गैर मुल्कियों के लिए, और अभी आपको याद है कि इलेक्शन से पहले जिन लोगों ने शरीयत के लिए दरख्वास्तें दे रखी थी और उन पर जो जानकारी का अमल था वो भी मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ पार्लियामेंट में उस बिल को जेर बहस बाया जाना मकसूद था उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया था, और खदशा ये पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों की ये दरख्वास्तें मंजूर होकर सिर्फ पार्लियामेंट में पेश होने का इंतजार कर रही हैं उनको दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना पड़े, और अगर ये हो गया तो ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुर्म होगा क्योंकि वो पहले ही से तमाम शरायत पूरी कर चुके हुए हैं इस हद तक कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो पार्लियामेंट में मंजूरी की मुंतजर हैं।
0: लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नसर भाई ये कह रही है कि ये शर्तें तो पूरी कर लेते हैं लेकिन इनका जो माइंड है जो इनका दिल है वो जमहूरी नहीं है, तो ये हमें पता, वो ये कहते हैं कि हमें अब शरीयत देने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो दिल है वो जमहूरी है, ये जमहूरी वैल्यूज़ पे जो है वो उसको कबूल करते हैं, तो कैसे ये कोई मीटर है कि आप लगा के पता कर लेंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं आपके दिल में?
1: देखिए ये मफरूजे जो हैं ये तो शुरू ही से हमारे साथ चले आ रहे हैं बदकिस्मती से
0: जी जी,
1: लेकिन मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूँ और बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा
0: जी
1: कि बस अनासर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अब उन्हें डेनिश पासपोर्ट मिल गया है और वो मादर से ज़रा आज़ाद हैं।
0: नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिनको पासपोर्ट नहीं मिला, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ।
1: जी हाँ, जिनको पासपोर्ट नहीं मिला है और जिनकी दरख्वास्तें जो हैं अभी समाज के लिए सस्पेंड की गई हैं,
0: जी
1: उनके मामला को फौरी तौर पर अंजाम देना चाहिए। और ये बिल जो है ये अब हुकूमत को चाहिए, खासतौर पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी को, कि उन्हीं ने ये बिल जो है ये रोका हुआ था, मुअक्कल किया हुआ था, अब उसको जल्दी से पार्लियामेंट में पेश करके उन लोगों को शरीयत से नवाजा जाए।
0: वेरी नाइस नसर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
1: और आपका बहुत शुक्रिया। और मैं ये अर्ज करूँगा आपसे कि बहुत कम लोग हैं जो शायद जहाँ डेनमार्क में ये यूरोपियन टाइम अखबार पढ़ते हों ऑनलाइन, मैं इन्हें कहूँगा कि वो आपका मजमून जो है वो ज़रा ज़्यादा पढ़े, उससे उनको वो हथियार हासिल हो जाता है जो इस मुआशरे में मुकालमे के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: आपकी ज़रा नवाजी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं और इसी हौसला अफजाई की वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इतना।
1: आपका भी शुक्रिया और मेरी तरफ से आपके सामईन और नाज़रीन को ये मौसम गर्मा मुबारक हो जी और अल्लाह हम सबको अपनी तना में रखे।
0: आज हमने डेढ़ घंटे की मीटिंग में दो बोतलें पानी की पी ली हैं, इतनी जो गर्मी हो रही है यहाँ पे। रजा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम बादशाह के संग, और हमें उम्मीद है कि हमारे सामने नाज़रीन को जो मालूमात हैं हमने पहुंचाई हैं, जिन ख़बरों पे नसर भाई की जो हमने कीमती राय ली है, उससे उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो सामने नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल radio@snipelay.com।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जून पाकिस्तान में हफ्ते की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 210। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इतराफ़े जुर्म। जी हाँ, मुन्ने मुनीब ने आज एक ऐसा इतराफ़े जुर्म किया जिसके बाद उन्होंने बड़े हाजी साहब मतलब के जनरल बाजवा, उनके बाद आने वाले हाजी साहब मतलब के जनरल आसिम मुनीर और छोटे हाजी साहब मतलब के DGISPR उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। मुन्ने मुनीब ने टेलीविजन के ऊपर यह एतराफ़ किया कि इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद महीनों के बाद ही हमें यह बताया गया कि इन पर पड़ जाओ। जी हां, उन्होंने कहा कि हमें खुला छोड़ दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत पर पड़ जाओ और हम पड़ गए। मुन्ने मुनीब के अल्फाज थे कि मैं जाती तौर पर आपको बताता हूं, इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल अहम मनसब पर बैठे लोगों ने कहा था कि यह बहुत नालायक है, इन पर खुलकर तनकीद करें, क्योंकि डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, ये अल्फाज थे। उसने अल्फाज भी कोट करके बताए कि ये मिट्टी ये गंद हम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए इन पर पड़ जाओ। आज मुन्ने मुनीब फारूक ने तमाम जितने भी MF थे उनको भी बरहना कर दिया, उसके साथ साथ जितनी सरकारी हजने थी उनको भी एक्सपोज कर दिया और जितने लौंडे लपाड़े थे उन सबको भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, हर इतवार वाले दिन माइक्रोफोन लेकर आसमा शराजी इतवार बाजार पहुंच जाती थी और महंगाई का मस्नूई बयानिया बनाती थी। अब महंगाई का मस्नूई बयानिया क्यों कह रहा हूं, क्या महंगाई हमारे जमाने में नहीं हुई थी? हुई थी, महंगाई तो तकरीबन हर जमाने में होती है, मतलब अमरीका हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, महंगाई तो हर जगह हर वक्त होती है, लेकिन देखना यह होता है कि महंगाई जो है वो किसी आम दिनों के मुकाबले में या आम सालों के मुकाबले में आम दौर के मुकाबले में क्या बहुत ज्यादा हुई है या कम हुई है, या उसमें कोई वजह शामिल है। जैसे कोविड में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आते ही ऐसी कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि कम महंगाई थी कंपैरेटिवली जो नवाज शरीफ के पिछले दौर में या उससे पिछले दौर में थी। आज जो महंगाई है उसको तो छोड़ ही दें, उसको तो अल्लाह की सुपुर्द कर दें, मैं वैसे अमूमी तौर पर बता रहा हूं। आपको याद करना पड़ेगा कि लौंडा लपाड़ा जी एक एक डॉलर के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं एड़ियां जमीन पर रगड़कर, हर रोज वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, पेट्रोल की कीमतें तो 15 दिन बाद बढ़ती और कम होती थी, उनका ट्वीट तकरीबन हर रोज आता था, और एक रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी तो वो कहते थे कि बस तूफान आ गया। आज 300 रुपए लीटर पाकिस्तानी पेट्रोल खरीद रहे हैं और आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो उस वक्त से आधी है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस वक्त कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, वो उससे आधी है जिस कीमत के ऊपर इमरान खान ले रहे थे, और पाकिस्तान में कीमत दुगनी है जिस पर इमरान खान दे रहे थे। ये जरा गौर कीजिए, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $125 फी बैरल तक या $123 फी बैरल तक तेल की कीमत थी और पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर थी, और आज पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है और इंटरनेशनल मार्केट में $70, और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये $70 से भी नीचे आ जाएगी, लेकिन लौंडा लपाड़ा जी हमें रोज बताते थे। आज मुन्ने मुनीब ने वो इकबाले और इतराफ़े जुर्म किया है जिसके बाद उन्होंने किसी सहाफ़ी के पल्ले, जो उन वाले सहाफ़ियों की बात मैं कर रहा हूँ जो पढ़ गए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ इस चीज़ में पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को पहले ही उनके तमाम कारनामे अयां कर चुके थे जब उन्होंने इकबाले जुर्म किया था। वो क्या इकबाले जुर्म था, जब एक्सटेंशन पर उन्होंने वोट दिया था जनरल बाजवा को, तो वो इकबाले जुर्म क्या था ये जरा सुनिएगा। पहले लौंडा लपाड़ा जी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, आपने गौर करना है कि लौंडा लपाड़ा जी भी ये नहीं सवाल पूछ रहे कि आप उनके साथ मिल चुके थे, आपकी उनके साथ डील हो गई थी, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो इस इंटरव्यू के अंदर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस आ गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मसाज वगैरह कर रहे हैं जिससे सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं लौंडा लपाड़ा जी, वैसे करते तो मसाज ही हैं, उनका मसाज पार्लर ही है, उनकी सहाफत की दुकान नहीं है बल्कि लौंडा लपाड़ा जी का मसाज पार्लर ही है। पुराने ज़माने में मालशिये जो थे वो बोतलें जो थे तेल की वो लेकर जो भाटी गेट और उन इलाकों के अंदर छनकाते फिरते थे कि हमसे मालिश करवा लो। अब ये जरा नया जमाना आ गया है, इसके अंदर स्टूडियो के अंदर बैठकर आप पेश करते हैं कि हमसे मालिश करवा लो। तो बहरहाल है तो मसाज पार्लर ही, लेकिन उनकी और ख्वाजा आसिफ की क्या बात हुई ये पहले जरा सुनिए।
2: आपकी आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था
3: अप्रैल 2019
2: से, दे यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ।
3: और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2021।
2: तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है?
3: सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रही थी, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप। मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोन मोस्ट
2: ईयर कौन सा?
3: 19 में,
2: ठीक।
3: और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिसप्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था।
2: अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था?
3: जी उन्होंने किया था।
2: अच्छा।
3: और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था।
1: सुन लिया आपने, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि महज इमरान खान की हुकूमत आने के 8-9 महीने के अंदर ही उन्हें ये ऑफर दे दी गई थी। इसका मतलब यह है कि मुन्ना मुनीब जो कह रहा है कि हमें पहले साल के अंदर अंदर ही, मतलब इससे भी पहले मुन्ने मुनीब को यह कह दिया गया था कि पै जाओ। अच्छा, फिर आखिर पर आपको यह भी बताएंगे, कोशिश करेंगे कि यह भी आपको जवाब देने की कोशिश करें कि फिर इमरान खान को बर्दाश्त क्यों किया गया, मतलब उनको जब वो हुकूमत में आ रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया हुकूमत में आने से, ये जर्नल्स ने क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले को सॉल्व कर लें। तो अब आप याद कीजिए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ जिनका ये इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया, वो कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही हमें जनरल बाजवा ने ये कह दिया था, अप्रैल 2019 की बात हो रही है, कि आपको पहले पंजाब की हुकूमत देते हैं फिर आपको मरकजी हुकूमत दे देंगे, आप ले लें। और ये अप्रैल में ऑफर कर दी गई, तो इस पर काम कब से शुरू हो गया होगा ये खुद ही सोच लीजिए। मुन्ना मुनीब भी आज कंफर्म कर रहा है कि हमें कहा गया था कि ये बड़े नालायक हैं, इनको पड़ जाओ, हम पर बदनामी नहीं आनी चाहिए, मतलब इन्हें बदनाम कर दो। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की जो टेक्स्ट बुक है उसमें किसी भी सियासतदान को पहले नालायक साबित किया जाता है, उसके बाद उसे कंप्रोमाइज साबित किया जाता है, पहले नालायक और नकम्मा, फिर वो कंप्रोमाइज्ड होता है, फिर वो करप्ट होता है, यह भी साबित किया जाता है, फिर उसके बाद वो बैरूनी एजेंसियों का कोई ना कोई आला का, रॉ का, ये फातिमा जना को भी ना छोड़ा गया, किसी को ना छोड़ा गया, वो रॉ का CIA का एजेंट होता है, फिर उसके बाद उसके जो मजहबी मामलात होते हैं वो खराब होते हैं, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, फिर उसके जो जिंसी मामलात हैं उन पर अटैक किया जाता है, उसके अफेयर्स, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी शादी इमरान खान के साथ, तो तमाम हदूद क्रॉस कर दी जर्नल्स ने, इद्दत और निकाह के घटिया केसेस बनाकर आपको बताया कि ये अंदर से किस कदर गंदे हैं और गलीज हैं। उसके बाद आखिर पर उसके मजहबी मामलात के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि उसका इस्लाम के बारे में मामला भी ठीक नहीं है। उसकी आखिरी हदूद एक तो इद्दत और निकाह का केस आपने देखा, और दूसरा भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद कैमरा लेकर गए कि उनकी वीडियो बनाएं कि उनके खतने हुए हुए हैं या नहीं, ताकि अगर उनके खतने ना हुए होते अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन, पता नहीं वहां पर इतना फोकस इनका क्यों है। वो कहते हैं कि उनकी वीडियो इसलिए बनानी थी कि साबित किया जा सके कि उनके खतने नहीं हुए हुए थे। तो इसका मतलब उस वक्त के हाजी जियाउल हक साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि ये साबित कर दें कि जुल्फकार अली भुट्टो तो अच्छे मुसलमान थे ही नहीं, शराब पीने के उन पर इल्जाम तो पहले ही लगा दिए गए थे, या वो पीते भी थे अगर, तो ये बताने के लिए कि वो तो कोई बड़े अच्छे मजहबी आदमी नहीं है, इसलिए उनका हुक्मरानी के साथ तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम सारे हाजी साहब हैं, हमने कभी शराब नहीं पी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए हुकूमत हमारे पास ही होनी चाहिए। बार वापस आते हैं, اب یہ جو منیب فاروق صاحب نے اقبال جرم کیا اور اس سے پہلے جو خواجہ آصف نے اقبال جرم کیا، اقبال جرم تھا یا سازش میں شمولیت تھی خواجہ آصف کی جو انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں ہی ہمیں بلا کر یہ سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے دو واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہماری حکومت تقریباً درمیان میں پہنچی تھی، میں اپنی ڈائری میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا دن تھا، لیکن تقریباً درمیان میں پہنچی تھی کہ ایک شام کو پرائم منسٹر ہاؤس میں، تب کووڈ آ چکا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر کوئی شام کے 7-7:30 بجے کی میٹنگ تھی۔ عمومی طور پر اتنی لیٹ ایسی میٹنگ نہیں ہوتی تھی جس کا کسی کو پتا نہ ہو کہ وہ کس چیز کی میٹنگ ہے۔ مجھے بھی میرے آفس میں بتایا گیا کہ میٹنگ ہے، فوراً پہنچیے، تو پہلے سے وہ پلانڈ یا اسکیجول میٹنگ نہیں تھی۔ جب میں اس میٹنگ میں پہنچا تو اس میٹنگ کے اندر پہلے سے 5-6 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، یا 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اسے عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کہہ لیجئے، جو موسٹ سینئر لوگ تھے وہ اس کمرے میں براجمان تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، شیریں مزاری تھیں، مراد سعید تھے، اس کے ساتھ ساتھ اور میں کچھ اکابرین کے ایک دو کے نام بھول رہا ہوں گا، فواد چودھری تھے، بہت ہی چیدہ کوئی 8-10 لوگ جو تھے وہ تھے۔ میں اس سے پہلے کوئی اور کام کر رہا تھا، پیغام تو میرے لیے بھی پہلے کا آیا تھا، لیکن اس کام کو ختم کر کے جب میں کمرے کے اندر پہنچا تو یہ دوست وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں جیسے ہی انٹر ہوا تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اس کو پتا ہوگا کس چیز کے لیے میٹنگ ہے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ کس چیز کی میٹنگ آپ لوگوں نے بلوائی ہے اس وقت، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، مجھے بھی ابھی یہ بتایا گیا تھوڑی دیر پہلے کی میٹنگ ہونی ہے، تو میں کچھ کر رہا تھا اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں پہنچا ہوں۔ تو اس پر پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ بتا نہیں رہا، یہ کھچرا ہے، یہ بتا نہیں رہا، یہ چاہتا ہے کہ وزیراعظم آ کر خود ہی بتائیں، پتہ اسے سارا ہے کہ یہ میٹنگ کس چیز کی ہے۔ اچھا، اس دن وہ کوئی اتفاق کی بات ہے، عمومی طور پر مجھے پتا ہوتا تھا، لیکن اس دن مجھے اس میٹنگ کا نہیں پتا تھا کہ یہ اچانک سے کیوں بلائی گئی ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں بھی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، پرائم منسٹر صاحب آئے۔ پرائم منسٹر صاحب کے پیچھے ایک طرف جنرل باجوا چل رہے تھے اور دوسری طرف جنرل فیض جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ چل رہے تھے۔ دونوں آ گئے، بیٹھ گئے۔ اب جنرل باجوا جو ہیں وہ ایک کرسی ان کے لیے خالی لگا دی گئی، عمران خان صاحب بیٹھے تھے اس کے بعد جنرل باجوا، حاضرین کے ساتھ، ان کے برابر پہ نہیں بلکہ حاضرین کے ساتھ جنرل باجوا بیٹھ گئے، اور اس کے آگے پھر پرویز خٹک، اور دوسری طرف پہلی کرسی کے اوپر شاہ محمود قریشی، اور اسی طرح جنرل فیض بیٹھ گئے، اور پھر یہ میٹنگ شروع ہو گئی۔ اب کسی کو نہیں پتا تھا یہ میٹنگ کس چیز کی ہے۔ تو عمران خان صاحب بہت ہی بے باک طریقے سے بات کرتے تھے، اردلی تو تھے نہیں وہ۔ وہ جنرل صاحب وغیرہ، جناب اقبال بلند کرنے والی باتیں تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے، آپ سب روز آ کر مجھے کہتے ہیں کہ فوجی جنرلز ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں اور ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور آپ سب یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ ہمیں ملٹری جنرلز لے کر آئے ہیں، اور یہ بات میں نے پہلے کبھی پوری تفصیل میں نہیں بتائی، آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے ہلکی پھلکی بتائی یہ میں نے واقعہ، لیکن آج پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب یہ بھی آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ باہر میڈیا میں ہمارے خلاف یہ محاذ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت ملٹری جنرلز لے کر آئے اور اب وہ حکومت گرا رہے ہیں، تو کیونکہ آپ بھی سوال کرتے ہیں، مجھے بہت سارے جرنلسٹ بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور میں کوئی بھی جواب دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آپ کے چہروں پر کہ آپ مطمئن نہیں ہوتے اس طرح سے، کیونکہ باہر جو فضا بنا دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ڈائریکٹلی بیٹھ کے کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو جائے۔ اچھا، اس سے پتا یہ چلتا تھا کہ جنرل باجوا صاحب کو بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میٹنگ ہونی ہے، انہیں بھی پرائم منسٹر نے ویسے ہی ملنے کے لیے بلایا تھا اور لا کر پھر وہاں بٹھا دیا تھا، کیونکہ جنرل باجوا صاحب کے چہرے کے تاثرات بھی فوراً سے بدل گئے جیسے ہی پرائم منسٹر نے یہ بات کہی۔ اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات آپ لوگوں کے اندر ہیں وہ کھل کے پوچھیں۔ ایک لفظ یہ تھا کہ کوئی پردے داری نہیں ہے اس میٹنگ کے اندر، کھل کے بات کریں، میں کسی کو کسی سوال اور کسی جواب پر جج نہیں کروں گا۔ جونیئر سے سینئر ترین، سب سے جونیئر تو میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میں یہی کہہ سکتا ہوں تجربے کے لحاظ سے، جس طرح سے بھی آپ نے کہنا، تو جونیئر سے سینئر ترین شخص کو کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس نے کیا سوال کرنا ہے، کھل کے سوال کیجئے جس نے بھی سوال کرنا ہے، اور یہ جو سوالات آپ روز میرے سے کرتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں، یہ یہاں کھل کے بات کریں۔ سوالات شروع ہو گئے، کسی نے کوئی سوال کیا تو کسی نے کوئی، پہلا ایک سیدھا سوال اس کا جواب بتا دیتے ہیں کہ جی باہر ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہمیں جنرلز لائے ہیں، ہم الیکشن جیت کر نہیں آئے۔ اس پر جنرل باجوہ بولے، اور یہ میں بالکل، آپ کو پتا ہے کہ میں قسمیں نہیں کھاتا اس لیے میں قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن اپنے پورے آنر کے ساتھ بتا رہا ہوں، یہ تمام لوگ زندہ ہیں، اللہ ان سب کو زندگیاں بھی دے، یہ تمام لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں جو اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میں نے نام بھی لے دیے، ایک دو نام بھول گیا ہوں گا، باقی میں نے نام لے دیے۔ جنرل باجوہ نے شروع یہاں سے کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قسم کھائی انہوں نے کلمہ پڑھ کے، اور کہا کہ یہ بکواس کرتے ہیں، ہم کسی کو ایسی بات نہیں کہتے۔ اور پھر اگلی انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ آپ لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ہم نے آپ کے الیکشن کے اندر کوئی ایسے آپ کو ووٹ نہیں پڑوا دیے کہ آپ کو الیکشن ہم نے جتوایا ہے، یہ قسم کھا کر انہوں نے اس میٹنگ میں بیان دیا۔ انہوں نے پہلے کلمے کی قسم پڑی، اس کے بعد دوسری قسمیں کھا کے یہ کہا کہ آپ اپنے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں، ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا، حالانکہ کیا تو تھا، ہماری 15-20 سیٹیں چوری کی تھیں انہوں نے، کم کی تھیں۔ انہوں نے پہلے یہ قسم کھائی، اس کے بعد یہ بات بھی ہوئی کہ میڈیا کے اندر ہی، اس پر بھی انہوں نے قسم کھا کر یہ کہا، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پھر اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا، قسمیں بہت کھاتے تھے باجوہ صاحب، اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں کہی، ہم یہ محاذ آپ کے بارے میں نہیں بنا رہے۔ اچھا، اس وقت تک ملک کے چوٹی کے کئی بزنس مین بھی عمران خان کو آ کر یہ بتا چکے تھے کہ فوجی جرنلز آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے جو میڈیا کے جرنلسٹ آپ کے بہت قریب ہیں، وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ آپ کے خلاف شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ادھر سے ہی ضرور معاملہ سارا کیا جا رہا ہے۔ خیر، عمران خان صاحب خاموش رہے، ہم لوگ سوالات کرتے رہے، جنرل باجوہ صاحب تقریباً ہر بات کا قسم کھا کے جواب دیتے رہے، تقریباً ڈیفینسو تھے، نظر آ رہا تھا چہرے پر پشیمانی، نظر آ رہا تھا چہرے کے اوپر اپنا جو اقبال جرم ہوتا ہے، لیکن مان نہیں رہے تھے، اور قسمیں اور قرآن، قسم اور قرآن اٹھا کر اپنی بات کو، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک جٹلا دے اس میٹنگ کی جو پروسیڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کھل کے باتیں ہوئیں کہ آپ نے صحافیوں کو یہ کہا یا نہیں کہا، انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ نہیں۔ لیکن آج منا منیب یہ ثابت کر رہا ہے کہ چھوٹا حجی ہو یا بڑا ہو، یہ کلمے کی قسم بھی جھوٹی اٹھانا مسئلہ کوئی نہیں ہے، قرآن کی قسم بھی جھوٹی اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں پر یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ تو ایک میٹنگ آپ کو بتا دوں، دوسری میٹنگ میں اور آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں پنجاب کے ایک گاؤں میں ٹارٹ اسکول پر پڑھا، وہاں سے نکل کے بہت محنت کر کے امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی، صرف امریکہ کی یونیورسٹی نہیں، امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی، جو امریکہ کی 20 تگڑی ترین یونیورسٹیز میں یونیورسٹی ہے، آپ سب نے اس کا نام اتنا زیادہ پاکستان میں اس لیے نہیں سن رکھا ہوتا، تھوڑا سا جو لوگ تو سمجھتے ہیں ان کو سمجھ ہے، جن کو نہیں سمجھ ان کو بتا دوں کہ جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے، کولمبیا ہے، سٹینفرڈ ہے، یہ بہت اعلیٰ یونیورسٹیز ہیں، لیکن یہ امیروں کی یونیورسٹیز ہیں، یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، اور ان کا سائز ایسا ہی ہے جس یونیورسٹی میں میں پڑھاتا تھا اس کا اور ان کا، کہ جیسے آپ کمپیئر کریں مالٹے کو اور تربوز کو، جس یونیورسٹی میں میں پڑھاتا تھا وہ سائز کے اعتبار سے تربوز تھا، اور یہ جتنی یونیورسٹیز، بڑی بڑی امریکی یونیورسٹیز کے آپ کو نام پتا ہیں، یہ ساری مالٹے کے سائز کی یا اس سے بھی چھوٹے سائز کی، تربوز سے اگر آپ کمپیئر کریں تو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، شروع سے اشرافیہ کی یونیورسٹیز ہیں، یہ سرکاری یونیورسٹی تھی، لیکن یہ انہی کے ہم پلہ یونیورسٹیاں جن کو سمجھا جاتا ہے، یہ 3-4 یونیورسٹیز جو سرکاری ہیں امریکہ کی، لیکن انہی یونیورسٹیز کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہیں، ان میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، جس سے شاید ذوالفقار علی بھٹو بھی پڑھے تھے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے، اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن، اس کے بعد یونیورسٹی آف وسکانسن میڈیسن، اور اس کے بعد یونیورسٹی آف الینوائے اربانا شیمپین، اور ایک آدھ اور یونیورسٹی۔ یہ جو 4-5 یونیورسٹیز ہیں یہ سرکاری ہیں، بڑی یونیورسٹیز ہیں اور ہم پلہ ہیں۔ بتانے کی ساری بات یہ ہے کہ یہ سارا سفر کر کے وہاں تک پہنچا، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے جس کام پہ لگایا تو میرا اکثر امیج کیا بنا، بڑی بدتمیزی کرتا ہے، بہت سخت بولتا ہے، اور ان کو ذرا بدزبانی کم کرنی چاہیے۔ شہباز گل صاحب، ویسے تو آپ مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن آپ زبان بڑی سخت استعمال کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں عمران خان صاحب سے، جو میری آخری ملاقات ہوئی अमेरिका आने से पहले, दो तीन दिन पहले उनके घर पर, वो कोई दो घंटे लंबी मेरी मीटिंग थी रात के वक्त उनके साथ। रमज़ान था तो रात के वक्त हम मिल रहे थे, कोई गालिबन रात 12 बजे, 12:30 बजे से लेके कोई 2 बजे तक रात के, या शायद उससे भी लेट तक मुझे। तो उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उस वक्त जितने भी बिकने वाले लोग थे उनका उन्हें मालूम हो चुका था। एक बात उनसे मैंने और की, वो बात ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि, उन्हें जाहिर है पता था कि अब मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, अभी का टाइम तो मुश्किल चल रहा है, गवर्नमेंट के वक्त को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि वो अपनी याददाश्तें उन्होंने मुझे कुछ बताई थी। तो मैंने उसके जवाब में उन्हें कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि हमारी हुकूमत कभी दोबारा वापस ना आए। ये मैंने उनके मुंह पर बैठे, हम दोनों बैठे हुए थे, मैंने कहा। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब इस वक्त कुछ 27 केस हैं जिन्हें मैं भुगत रहा हूं, बलूचिस्तान से लेके हर जगह पर, और जाना पड़ता है रोज। आप यकीन कीजिए कि मैं रोज, जो लाहौर में कचहरी को कवर करते हुए रिपोर्टर हैं वो आपको बताएंगे, मैं हर रोज अदालत में होता था, क्योंकि 27 केसेस थे, कोई ना किसी की जमानत लगी हुई है, किसी की अबूरी जमानत लगी हुई है, किसी का कुछ लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि जी मैं सुबह उठता हूं, 8 बजे अदालत पहुंचता हूं, 8 से लेकर 12, 1 बजे, 2 बजे तक अदालतों में रहता हूं, उसके बाद मैं फारिग हो जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, कुछ एक्सरसाइज करता हूं, कुछ चंद दोस्तों से मिलता हूं, जिंदगी बहुत सुकून में है। तो उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब खुदा गवाह है, अगर मैं आपकी हुकूमत में आपके साथ काम करने का वक्त और आज के वक्त का कंपैरिजन करूं तो जिंदगी सुकून में है, ना किसी के साथ चक चक बक बक करनी पड़ती है, ना किसी की सुननी पड़ती है। तो मेरी दुआ है कि वो वक्त तो कभी ना आए, ये उससे बेहतर है, ये जिस वक्त में से गुजर रहे हैं, भले केसेस हैं, भले बुरे हालात हैं। तो ये मैंने बात क्यों कही थी, इसलिए कही थी जो आज मुन्ना मुनी फारूक ने बताया। मैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन की पोजीशन पर गया था, अब मेरा एक मसला है, मैं जिंदगी में जो करता हूं पूरे दिल से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। जो काम करना है, जो कुछ करना है, पूरे दिल से करना है। अब जब मैं वहां उतरा, अब मुझे बताइए मेरा दिल करेगा अजमा बुखारी के साथ बैठ के प्रोग्राम करने को? व्हाई वुड आई डू दैट? कोई भी बंदा, कोई जियो शऊर इंसान बैठ के उनके साथ प्रोग्राम करेगा? राणा सनाउल्लाह साहब के लेवल पर कोई बंदा जाएगा जिन्होंने 1991-92 में मरियम साहबा, कैप्टन सफदर और मरियम साहबा की मरहूमा वालदा के बारे में वो बातें की जो आज भी कोई नहीं कर सकता? आप इस लेवल पर जब जाकर आपने लोगों से मुकाबला करना, और आप नए हों बिल्कुल सियासत में, आपको ये भी ना पता हो कि कहां पर मक्कारी करनी है, कहां पर सख्त बात करनी है, कहां पर नर्म बात करनी है, सख्त बात करते हुए 7 लाख का क्या लगाना है, नर्म बात करते हुए किस तरीके से मुनाफकत करनी है, वो भी आपको ना पता हो, आप बिल्कुल सीधे आउट ऑफ द बोट वहां पहुंच जाए, तो जाहिर है ये जो जनरल बाजवा ने आज बताया है, मुन्ने मुनीब ने खुद, मतलब सभी को ही नंगा कर दिया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है उन्होंने, शाहजेब खानजादा, अंसार अब्बासी, आसमा शराजी, गरीदा फारूकी, अबसार आलम, सलीम साफी, लौंडा लपाड़ा जी, मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, और भी बेशुमार, वो एक शाहजेब आदिल शाहजेब कोई एक थोड़ी है, और भी बेशुमार नाम है, कईयों के मैं नाम नहीं ले रहा, चलें छोड़ देते हैं। ये सारे जो हमें पड़ गए थे, मतलब ARY पे भी 3-4 लोग थे, वो भी पड़े रहते थे, कुछ 2-3 थे जो नहीं थे, लेकिन 3-4 ऐसे थे जो पड़े रहते थे 24 घंटे, हर चैनल पर हमें पड़ गए थे। ऐसे ही आप कमरे से बाहर निकले हो, 5-7 लोग आपको मारना शुरू कर दें इकट्ठे आके, तो उस टाइम आप कितने फोकस और कंपोजर के साथ उनका मुकाबला करेंगे? और मीडिया के, अच्छा जो लोग पुराने घाघ थे हमारी मीडिया की टीम के अंदर, पहले से सियासतदान थे, वो रात को इनको मिल भी लेते थे। मुझे अभी भी याद है, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उनकी बेगम भी बड़ी जर्नलिस्ट है, वो भी, उन्होंने एक दफा खाने पे बुलाया। जब मैं वहां गया तो हमारी भी मीडिया टीम के लोग थे 2-3, और दूसरी तरफ से मरियम औरंगजेब और दूसरे लोग भी आए हुए थे। तो मैं थोड़ी देर के बाद वहां से उठ के आ गया, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मुनाफकत है कि मैं इन लोगों को करप्ट कहूं यहां टेलीविजन पर बैठकर या आपके सामने, और वहां टेबल पर ही हा करके खाने खाऊं और इन्हें अपना दोस्त गर्दानूं। लेकिन जो हमारे दूसरे दोस्त थे वो समझते थे कि सियासत में दोस्ती रखनी चाहिए, मतलब अगर आप एक दूसरे को टीवी पे बुरा भी कहते हैं तो बैकएंड पे आपकी दोस्तियां हो सकती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत समझते थे, ये आपको पता होगा कौन गलत होगा, लेकिन मेरे में ही कैपेसिटी नहीं थी। मैं दस, जाहिर है उसके बाद मेरी ऐसी जगहों पर जगह कहां बनेगी, मैं ऐसे सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकूंगा? तो मैं वहां से उठ के आ गया। तो वापस आते हैं, तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो आज मुनीब फारूक ने कहा, वो मैं आपको ये वाजे तौर पर बताना चाहता हूं कि पहले दिन से हुकूमत के ऊपर यह अलगार थी। इमरान खान को एक दिन भी हकूमत जो है वो चैन के साथ, मीन के वो फोकस करते पाकिस्तान। आप में से भी कई कहते हैं ना, वो बुजदार को लगा दिया, वो फलां कर दिया। बुजदार साहब का मैं भी नाकद था, मैं भी कभी उनकी उनके हक में नहीं था, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है उससे आप अंदाजा लगाइए कि मेरे ख्याल में तो फिर बुजदार साहब को इमरान खान साहब ने एक सेफ्टी वॉल के तौर पर ही लगाया था कि चलो मेरे कंट्रोल में तो रहेगा ना, क्योंकि कोई और लग जाता जिनको ला रहे थे बाजवा साहब तो सोचिए इमरान खान हुकूमत में होते और पंजाब का चीफ मिनिस्टर वहां से उनकी छुट्टी करवा देता। मतलब ऐसे हालात बना देते जनरल बाजवा, जो इनको कह दिया कि पै जाओ, तो जब उनके हाथ का वजीर आला आ जाता तो इमरान खान लाहौर जा भी ना पाते अहकाम कोई देने। लाहौर के अंदर किसी फाइल को रोकने, किसी ठेके को रोकने, किसी करप्शन को रोकने का काम तो उनके पास ना होता, वो वहां जा भी ना सकते। जाते तो वजीर आला मिलने से इनकार कर देता, फिर क्या करते वो। तो इसलिए ये बहस किसी और वक्त के लिए, लेकिन आज मुन्ने मुनीब ने एक दफा, हमें तो पता था सब कुछ, लेकिन आप सबके सामने उस हकीकत को बिल्कुल अयां करके रख दिया है, बिल्कुल अयां करके, कि ये सब कुछ उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स इमरान खान के आते ही उनके पीछे पड़ गए थे और चाहते थे कि गवर्नमेंट गिरा दी जाए। और ख्वाजा आसिफ ये मान चुके, आपको सुनवा दिया कि हमें अप्रैल में ही कह दिया था कि हुकूमत आप ले लें, और अब ये तमाम लौंडे लपाड़े, ये तमाम सरकारी हाजने, ये तमाम एमएफ जितने हैं, ये सारे आपको टेलीविजन पर आकर बता रहे हैं कि हमें कह दिया गया था। तो एक तो इनकी आप देखिए कि कितनी बेशर्मी है कि अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम रेंटेड थे, हम बिल्कुल किराए के टाउट थे, हमें कहा गया पढ़ जाओ तो हम पढ़ गए। ये बात इन्होंने तब नहीं बताई, ये मुझे मिलता था मुन्ना मुनीब बेचारा, बड़ा उस वक्त तो बड़ी मालिश करता था, बड़ी कोशिश करता था बेचारा। ये अलग बात है, मेरी एक बचपन से प्रॉब्लम है, कोई मेरी मालिश करे, मेरे मुंह पर मेरी तारीफ करे, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे मिले हुए हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा, वो तारीफ की बात शुरू करें, मैं बात दूसरी तरफ शुरू कर देता हूं कि तारीफ, क्योंकि जो आपके मुंह पर होती है ना वो तारीफ नहीं होती। वापस आते हैं इस बात में कि आज इससे आपको अंदाजा हुआ कि ये सारे के सारे टाउट उस वक्त क्या कर रहे थे, किस तरीके से एक एक डॉलर का ट्वीट ये लौंडा लपाड़ा जी किया करते थे पेट्रोल के ऊपर। आज पेट्रोल आपको बताया आधी कीमत पर है इंटरनेशनल मार्केट में, यहां दुगनी कीमत पर है, ये खामोश हैं। चलते चलते आपको क्विकली ये बता दूं, आपके जहन में आ रहा होगा फिर इमरान खान का रास्ता क्यों नहीं रोका गया। तो पहले इस सवाल का तो चंद दिन पहले मैंने जवाब दे दिया था आपको तफसील से कि इमरान खान साहब आए कैसे थे। 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने इतनी करप्शन कर दी कि उनका तो अपना नाम, वो तो खुद भी हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, वो इतने बदनाम हो गए थे। कई दफा पाकिस्तान में, पंजाब में, दूसरी जगहों पर ब्यूरोक्रेट ज्यादा करप्शन जब कर लेते हैं ना तो खुद खुड्डे लाइन पोस्टिंग लेते हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि अब उस पैसे को हजम कर लूं, पकड़ा ना जाऊं। तो दबा के जब पैसा सीजन लगा लेते हैं ना, उसके बाद वो कहते हैं जी मुझे वो एसटी बना दें, खुड्डे लाइन लगा दें, ताकि फिर वो भाई लटका के मुंह फिरते हैं जी मैं तो मारा गया मेरे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल से, वो तो उस वक्त मजबूर भी थे, मुशरफ के बाद वीक भी हुए हुए थे, तो जरदारी साहब ने करप्शन बहुत कर ली थी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि दोबारा से वो आए ना, जर्नल्स बर्दाश्त कर सकते थे, ना आवाम कर सकती थी, ना जरदारी साहब खुद कर सकते थे। नवाज शरीफ को लाए तो उनके साथ फड्डे बन गए। 11 में नवाज शरीफ को लाने से पहले ही इमरान खान के बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो चुके थे और वो पॉपुलर हो चुके थे, वाहिद एक कौम के पास चॉइस रह गए थे, जीतना उन्होंने ही था। हाँ, जर्नल्स ने बीच में अपने बहुत सारे लोग शामिल कर दिए और ये हवा बना दी कि हम इन्हें ला रहे हैं। अब ये ला क्यों रहे थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी न्यूयॉर्क में जाके ये बताता था और जर्नल्स भी ये बताते थे कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, सेडिस्ट है, उसको लाए तो आपकी तबाही कर देंगे, क्योंकि अमरीका वगैरह से इन्हें वो डील नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। दोबारा पॉलिश करने का मौका हम मांग रहे थे, हमें वो मिल नहीं रहा था अमरीका में। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा अगर आ जाए थोड़ी देर के लिए जिससे उनको डर आ जाए और वो फिर हमारी, हमें अपनी ताबेदारी में ले लें, तो ये मामला भी अच्छा होगा। ऐसे ही साथ ही जरदारी और नवाज शरीफ भी आंखें निकालना शुरू हो गए थे, कोई ईंट से ईंट बजा रहा था, तो कोई जो है वो नवाज शरीफ साहब भी, जाहिर है

की तस्वीर भी वायरल की गई, उस पर भी बात करेंगे। कश्मीर के मामलात पर भी पीटीआई और पीएम जमात इस्लामी मिली है, सब बातों पे बात करनी थी, खबरें थी सारी, मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं तफसील से आपसे इस पर बात करता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम